जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: सोमवार 24 अगस्त की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे हैं.
4: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
0: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Definitely हम सब की मोहब्बत आपकी मोहब्बत सदा रहेगी और जवां रहेगी. 5:04. Good morning everyone. नीतों का प्यार भरा नमस्कार. प्रणाम स्वीकार करें. I really hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं. और कैसे बताएं? वीकेंड अच्छे से बिताए अपने परिवार दोस्तों के साथ. बस नई मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है. इट्स अ न्यू डे एंड नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ इस नए दिन और इस नए हफ्ते की शुरुआत करते हैं विद गुड वाइब्स, गुड म्यूजिक, एक बड़ी सी स्माइल के साथ. नीतू आप सबका स्वागत करती हैं. तो चलिए आपकी मॉर्निंग को लवली एंड गुड गुड आज ऑलवेज बनाते हुए आपके मैसेजेस का इंतजार व्हाट्सएप पर सैकत नफ नफ दूस नफकात एंड ऑफकोर्स व्हाटएवर यू माइट बी स्टे वेल ट्यून्ड. कई लोग जो हैं अभी भी नाइट ड्यूटी पर हैं, बों को गाश. और अगर आप ऑलरेडी रास्ते पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. हालांकि बारिश तो हो नहीं रही है कि, लेकिन हाँ, गीतों की बारिश में आप कभी भी भीग सकते हो. सो वेटिंग फॉर यू, आपके मैसेजेस का इंतज़ार. और आज सोमवार है तो बस हर हर महादेव करते हुए आप सबकी मंगल कामनाएं.

0: shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: All right, काफी messages पहुंच चुके हैं on 5499 1294. So हमारा प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर and welcome आपका ज्योति as usual शातु बिनागस से और आंशी रेखा सुरेखा माधव परिवार और सबके नाम thank you so much. A very good morning. हर हर महादेव आपको भाई सूरज शर्मा सजादा त्रियोली से आपके नाम पूरे परिवार के लिए प्रणाम. रेडियो मस्ती हैव अ वंडरफुल डे अहेड. मिस्टर जयशन हरदयाल आपके नाम पूरे परिवार और दोस्तों के लिए. ओम नमः शिवाय. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं. और वीकेंड ठीक ठाक रहा? बिल्कुल ठीक ठाक रहा. रियली होप आप काफी एकदम बेस्ट रहा. शीला जी लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से अगला गाना आपके नाम पूरे परिवार के लिए. हेलो गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट गाना आपके लिए धीरज आयुष विधिशा अश्विन हरक साथ में है परिवार मोदालबिया से ज्योति अरविक के लिए और सभी परिवार के नाम. हर हर महादेव आपको. अंजनी जी कैसी हैं? ठीक ठाक. और गुड मॉर्निंग आपको फ्रेंड नुशरिन के लिए सब दोस्त जो इस वक्त फिलिंग स्टेशन में काम कर रहे हैं खास तौर आपके नाम अब्दुल्ला एंड सारा बानू. तो चलिए जितने भी लोग काम पर हैं सबको बोको हाश एंड काचा मिनितिया से आपका भी स्वागत करते हैं. मिस्टर अशोक और आपकी प्यारी पत्नी अंजनी और शंकर परिवार को प्रणाम नमस्कार.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बस मुड़ के देखा तो काफी मैसेजेस हैं ऑन 5499 1294 5499 1294 पर. हां जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. एंड यहां पर है कौन, जेंसन कुप एंड रुदेश, आपका भी बर्थडे है. फ्रॉम पद्मिनी वासन लियाना एंड जीव विनोदा माई वेंट को वी मी, अ वेरी गुड मॉर्निंग. नमस्कार आपको भी प्रेमिला जी और हर हर महादेव. आपको प्लेंदी पापा से कैसे, सब ठीक? पति रंजीत और आपके पूरे परिवार के नाम हैप्पी मंडे टू ऑल द स्टूडेंट्स. और मेरे भाई हैं संजीव बगन, साइलेश, बिग ब्रो मनोज, किरोदर और सिक्योरिटी गार्ड की यानी का काम करती हैं सुबह को हाश. आपके लिए भी सुया कंगुमा से हैं और पूरे बिहारी परिवार के नाम.
3: ठीक है, तुम उसी के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं.
4: अरे भाई, तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे तो और किसके बारे में सोचेंगे? तुम ही तो सब कुछ हो. ये देखो, उसके लिए अगर पालना लाया हूं तो तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया हूं.
3: कहां दिखा? सिल्की है.
4: हाँ.
3: कौन सा रंग?
4: लाल धारी वाली. जाओ जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ.
3: क्यों?
4: अरे वाह, भूल गए. अरे भाई, आज हमारी शादी की सालगिरह है, जरा बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, खुशियां मनाएंगे.
3: अच्छा, तुम्हें शादी की तारीख याद है? मैं तो समझती थी ड्यूटी के अलावा तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता.
4: फिर तानेबाजी की? हाँ
3: नहीं नहीं, यूं कह रही थी. चलो
4: चलो.
2: कभी कभी अच्छा लगता है ना अपने फेवरेट एक्टर्स की आवाजें सुनकर. दैट वाज ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन एंड राखी. अपने प्यार के सपने इन्होंने बुनोए हैं, आप भी बुनिएगा 5499 1294 पर.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 36 मिनट. दैट वॉज ऑफ कोर्स महेंद्रा कपूर और उषा खन्ना और कंगन फिल्म का सदाबहार गाना पर. यस, आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू मिस्टर ललित मोहन भट्ट. आप इंडिया से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साथ मिल रहा है. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. टू प्रिया फ्रॉम मोसलमो गोज आउट टू योर हबीश्वर और काम पर चले चुके हैं, बस उनको बोकोहाश. एंड टू आर एम टू टीम, थैंक यू सो मच.

0: बस अपनी सोच को आप सही रखिएगा, अच्छे रखिएगा और देखिएगा सब कुछ अच्छा ही होगा।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti,
0: and as usual, शुरुआत आपके साथ।
2: Aries, मेष राशि।
0: आज दिल और किस्मत दोनों आपका साथ देते नजर आएंगे। लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी, पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग पहले से मजबूत होगी। वैसे आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं और आपको ये कहना चाहेंगे कि नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी दोस्त की मदद से अच्छा रास्ता मिल सकता है। मन हो तो छोटी यात्रा पर निकले, इससे मानसिक सुकून डेफिनेटली मिलेगा।
2: टॉरस,
0: वृषभ राशि। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। थोड़ी लापरवाही चोट या परेशानी का कारण बन सकती है। That's why वाहन चलाते समय please be very careful। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, बच्चों के लिए कोई सरप्राइज प्लान भी आप

0: कर सकती हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में पूरा फोकस रखना होगा क्योंकि मेहनत का सही परिणाम तभी मिलेगा।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। पुरानी परेशानी दोबारा उभर सकती है, इसलिए समय रहते ध्यान देना बेहतर होगा। बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव मजबूत रहेगा, कुछ नया करने की आप कोशिश में सफल रहेंगे। लंबे समय बाद किसी पुराने दोस्त से मुलाकात मन खुश कर देगी। वैसे कारोबार में कोई अच्छी डील हाथ लग सकती है, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं को अच्छी तरह जांच लें।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: वेल आज आपको महसूस होगा कि हर लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से भी जीती जा सकती है। विरोधियों पर आप भारी पड़ सकती हैं, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। लव लाइफ में पार्टनर का समर्पण और सहयोग देखने को मिलेगा। परिवार से जुड़े किसी मामले में थोड़ी सतर्कता जरूर रखें क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन भी सकता है।
1: लियो सिंह राशि,
0: ऑलराइट, आज मन थोड़ा भारी रह सकता है और स्ट्रेस भी महसूस हो सकता है। बच्चों की सेहत को लेकर लापरवाही ना करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत ध्यान दें, यानी कि डॉक्टर वगैरह को दिखाए आप। जोखिम भरे काम में पैसा ना समय लगाएं और डेफिनेटली बड़े जो हैं आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप ही सकती है, उसे आप पूरी गंभीरता से पूरा करें वरना उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। दिन के दौरान कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी, घर में मेहमानों का आना जाना आपके लिए व्यवस्था से बढ़ेगी।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और सकारात्मक सोच से आप उन्हें आसानी से पार भी कर लेंगे। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी ना होने दें। घर की साफ सफाई, सजावट या किसी बदलाव पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। परिवार में शादी से जुड़े कोई पुराने रुकावट दूर हो सकती है और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ या बॉस की सलाह को नजरअंदाज करना नुकसानदेह हो सकता है।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज का दिन आपको आगे बढ़ने के नए मौके देगा। आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। किसी सहयोगी की कही बात आपको थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन उसे दिल पर लेने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे। पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात मन खुश कर देगी। जीवन साथी के लिए नई नौकरी या करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: ऑलराइट, आज सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। हालांकि परिवार में किसी छोटी बात को लेकर तनाव हो भी सकता है। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं या उसके लिए यात्रा करनी भी पड़ सकती है। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना खाने से बचे क्योंकि पेट से जुड़ी परेशानी हो भी सकती है।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है और सेहत भी कमजोर महसूस हो सकती है। वैसे कारोबार में किसी डील को लेकर चिंता बनी रहेगी, दैट्स व्हाई बिना पूरी जानकारी के फैसले आप ना लें। माँ से लिया हुआ वादा, किया हुआ वादा पूरा करना जरूरी है वरना मन में बेचैनी बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें और आज नए निवेश से दूरी रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज बढ़ते कर खर्च आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल सकती हैं। अगर बजट का ध्यान नहीं रखा तो बचत भी प्रभावित हो सकती है। भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ने की आशंका है और मामला कानूनी रूप भी ले सकता है। That's why बातचीत से समाधान निकालने की आप कोशिश करें। आलस्य और काम टालने की आदत आज नुकसान पहुंचा सकती है और किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा ना करें और जरूरी दस्तावेज या सामान संभाल कर रखें।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा। लंबी यात्रा की योजना बन सकती है। लव पार्टनर यानी कि आपके जीवन साथी की भावनाओं को समझना आज

0: बेहद जरूरी होगा, क्योंकि बिना सोचे कही गई कोई बात रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है। काम तेजी से पूरे होंगे, लेकिन दूसरों के निजी मामलों में दखल देने से बचना होगा।
1: Pisces, मीन राशि।
0: एंड फाइनली आज कानूनी मामलों में निवेश सावधानी बरतने की आपको जरूरत है, विशेष सावधानी की जरूरत है। कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन पुराने निवेश खासकर शेयर बाजार से जुड़े निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। किसी भी डील को फाइनल करने से पहले हर दस्तावेज और शर्त को ध्यान से पढ़ें। साझेदारी के मामलों में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। न्यू व्हीकल खरीदने का विचार बन सकता है, इसके लिए लोन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं। आर्थिक फैसला सोच समझ कर लेना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड अ लवली डे अहेड।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: ना आ सके अंदर से कोई बाहर ना जा सके

5:54 मिनट 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. वेरी गुड मॉर्निंग आपको मिस्टर दीपक. हैव अ गुड डे अहेड. एंड सोनम भोला, वीना, जसप्रीत, स्वबीन और पापा हैं बेब गर्व. और बस सैटरडे को वंदना का बर्थडे था तो लगे हाथ हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. और आप है सपना, आपकी लव जान, आपके प्रकाश के लिए. एंड मुलाकात होगी बस 6 बजे के समाचारों के बाद. गुड मॉर्निंग टू यू टू दूधी का दिखे से एंड रघु जना परिवार. साथ में है सरिता फ्रॉम

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: 6 बजे हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार नीतु. शाश्वताओं को भी नमस्कार. आज सोमवार 24 अगस्त 2026 के प्रातकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. स्कूलों में नया शैक्षणिक सप्ताह शुरू हुए एक सप्ताह हो गया है, लेकिन ग्रेड 11 के छात्रों के लिए SC परीक्षाओं से पहले होने वाली तैयारियों के बीच मॉक परीक्षाओं के नतीजे चिंता बढ़ा रहे हैं. शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिविजन के आंकड़ों के मुताबिक 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा, जबकि गणित में केवल 37% छात्र ही पास हुए. स्थानीय सरकारी पाठशाला का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें लोग प्यार से जैन के नाम से जानते थे. स्थानीय के इस बेटे और MMM के प्रमुख नेताओं में शुमार जैन कतारी ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर विदेश व्यापार से जुड़ी वार्ताओं में अपनी पहचान बनाई थी. गोशवा में 7 महीने के बच्चे की कथित हत्या का मामला सामने आया है. मामले में बच्चे के 30 वर्षीय पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी पर उसने कहा कि उसको शैतानी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसके कारण ये हत्या उसने की और बच्चे का शव अभी अस्पताल भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, जबकि जांच जारी है. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस के किसानों ने अपनी उपज औसतन पहले की तुलना में कम कीमत पर बेची. सब्जियों के दाम में गिरावट खासतौर पर तेजी रही, जिसमें गाजर के उत्पादकों को मिलने वाली कीमत

में 54% से अधिक की भारी कमी दर्ज की गई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार या सुपरमार्केट में उपभोक्ताओं को भी सब्जियां सस्ती मिली। आज सोमवार दोपहर 12 बजे से काजिनो दे मोरिस के कुछ कर्मचारी और उनके यूनियन प्रतिनिधि राष्ट्रसभा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। करीब 600 कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि काजिनो के संभावित टेकओवर के लिए टेंडर प्रक्रिया के बाद से उन्हें अब तक आगे की प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। सरकार डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया को तेज कर रही है और सरकारी पोर्टल तथा विभिन्न सरकारी वेबसाइटों को एक ही स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलने की तैयारी है। 21 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस पहल पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक आधुनिक तथा एकीकृत और नागरिक केंद्रित बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट के पास पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज डूब गया है। जहाज पर सवा 24 लोगों में से 2 को बचा लिया गया, जबकि 22 अन्य की तलाश के लिए भारतीय तट रक्षक बल और नौसेना का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो, चला बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत हमारे इलाके पर एक कमज़ोर दबाव का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहाना होगा, सिवाय दोपहर बाद में पश्चिमी इलाकों में कुछ बादल विकसित होंगे और अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। शाम के समय पश्चिम, उत्तर पश्चिम तथा सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी और बाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और देर रात में पूर्व तथा ऊंचाइयों पर थोड़ी देर के लिए वर्षा होगी। हवा हल्की बहेगी सुबह के समय तथा रात के दौरान पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त शाम 5:59 पर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 बजे।

0: जो भी करे सोच समझ कर करे, हर कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाए. लेट मी विश यू ऑल वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग. प्यार भरा नमस्कार प्रणाम वंस अगेन. 6:11 हुए हैं.
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
0: मस्ती के मूड में है तो बस आपका ये दिन, आपकी ये जो सुबह एकदम लवली हो, गुड गुड हो. इंदिरा उसनी, बाप रे बाप, इतना लंबा मैसेज. पृथ्वी वैश्य से अपनी मामा जो आज 92 इयर्स की हुई हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर है सीला, सत्यानंद और मीना, वीना, सोना, वीको, सावित्री, आश्विन, बाप रे बाप, अविश, राजी, सजनी, प्रिया, ईशा, प्रीशा, देवा, कृष, वंदना, सीमा, जसप्रीत, स्वविन, गर्व, अविशा, सीमा, सिद्धि, याशना, फ्रेयश्ती, सभी राम गुलाम परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. नमस्कार नीतू. नमस्कार.

Attorney G, good things come to those who believe. Better things come to those who are patient. And the best things come to those who don't give up. That's it. ये हुई ना बात. बस जो भी हो आप अपने आप पर भरोसा रखें. Be patient. और हाँ कभी भी हिम्मत मत हारिएगा. नमस्कार आपको ललिता एंड जीतन फैमिली. साथ में गुड मॉर्निंग किशन रघुनाथ फ्रॉम सुरीनाम. ट्रैक आपके लिए पत्नीवाला बेटियां जिया और रिया एंड द रघुनाथ परिवार. एंड अ वार्म गुड मॉर्निंग टू यू टू. यहां पर हैं कौन? प्यारी सी रेखा, अंश है पोबो जैसे आपके पूरे परिवार के नाम. आकाश एंड मनसुख फैमिली है. थैंक यू सो मच.

6:25 साढ़े छह बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. उसके बाद बेदिता के साथ मॉर्निंग बीट. हैप्पी फर्स्ट बर्थडे टू बेबी थियांशा सीटल ऑफ रोड्रिग्स जयान सहाना रविश परिशा लव शांडिया वांस की तरफ से ढेर सारा प्यार. आगा टू फैमिली फ्रॉम कॉम्बे हर हर महादेव आपको एंड विशिंग यू ऑल अ लवली डे अहेड. नमस्ते और एम टू टीम. नेक्स्ट गाना गुजार टू बहन जी प्रतिमा और उनका बर्थडे है तो चलिए बेदिता सरप्राइज कर दीजिए कौन को. ओजस्वी ओके गुड मॉर्निंग बापरी बाप. मामा रति पापा है बॉबी मामा दीपा पापा दीपक और लवेश और सब परिवार की तरफ से सबको

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

सोमवार 24 अगस्त 2026 की इस प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। स्कूलों में नया शैक्षणिक सप्ताह शुरू हुए एक सप्ताह हो गए हैं, लेकिन ग्रेड 11 के छात्रों के लिए एससी परीक्षाओं से पहले होने वाली तैयारियों के बीच मॉक परीक्षाओं के नतीजे चिंताजनक। शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ों के मुताबिक 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा। स्थानीय सरकारी पाठशाला का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखा जाएगा। स्थानीय के इस बेटे और एमएमएम के प्रमुख नेताओं में शुमा जैन कतारी ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर विदेश व्यापार से जुड़ी वार्ताओं में अपनी पहचान बनाई थी। घोषवा में 7 महीने के बच्चे की कथित हत्या का मामला सामने आया। मामले में बच्चे के 30 वर्षीय पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि जांच जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस के किसानों ने अपनी उपज औसतन पहले की तुलना में कम कीमत पर बेची। सब्जियों के दाम में गिरावट खास तौर पर तेजी रही, जिसमें गाजर के उत्पादकों को मिलने वाली कीमत में 54% से अधिक की भारी कमी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट के पास पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज डूब गया। जहाज पर सवार 24 लोगों में से 2 को बचा लिया गया, जबकि 22 अन्य की तलाश के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। 24 अगस्त 2026 को छात्रों के कक्षाओं में लौटे एक सप्ताह हो गया है। वे अब शैक्षणिक वर्ष के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ छात्रों के लिए ये समय दूसरों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें ग्रेड 11 के छात्र भी शामिल हैं, जिन्हें कुछ ही हफ्तों में एससी की परीक्षाओं का सामना करना है। हालांकि दूसरी तिमाही में आयोजित मॉक परीक्षाओं के नतीजे उत्साहजनक नहीं हैं। शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ों के अनुसार 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा। और अगर बात करें गणित यानी मैथमेटिक्स की, तो स्थिति और भी चिंताजनक है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले केवल 37

0: प्रतिशत छात्र ही इस विषय की परीक्षा में सफल हुए हैं। इन आंकड़ों ने शिक्षा मंत्री की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस पर प्रस्तुत है आशी बाचू की रिपोर्ट पर अभी उदय का विवरण।
1: साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं से ठीक पहले शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा पौसाद ने चेतावनी जारी की है। उनके मंत्रालय ने पहले ही हाई रिस्क वाले शैक्षणिक संस्थाओं की पहचान कर ली है। शिक्षा मंत्रालय के विषय विशेषज्ञों द्वारा इन कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं का बेहतर सुपरविजन किया जाएगा। खासकर उन छात्रों की मदद की जाएगी जिन्हें पढ़ाई में कठिनाई होती है। उनके अनुसार इन परिणामों के पीछे कई कारण हैं। उन्होंने स्कूल की शुरुआत से ही मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध का जिक्र किया। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अत्यधिक और व्यापक उपयोग को भी एक वजह बताया। कई शैक्षणिक संस्थाओं में मोबाइल फोन को लेकर हम जागरूकता अभियान चला रही है। आईसीटी मंत्रालय तथा मॉरिशस टेलीकॉम के सहयोग के साथ कार्य सत्र लगाए गए। छात्रों को कहा गया कि रिसर्च वर्क के लिए मोबाइल फोन एक टूल है, परंतु अपने निबंध यानी कि ऐसे लिखने के लिए नहीं। छात्रों को खुद अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए और न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा छात्रों में पढ़ने की क्षमता यानी कि रीडिंग कल्चर की आदत भी कम हो गई है। उनके अनुसार इसका सीधा असर भाषा पर पकड़ और दक्षता यानी कि लैंग्वेज मास्टरी पर पड़ रहा है। देश के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के पुस्तकालयों के ढांचे पर फिर से गौर किया जा रहा है। भारत, फ्रांस, बर्तानी, यहां तक कि अमेरिका दूतावास की मदद से बहुत पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं। आने वाले ब्लूप्रिंट पर भी रीडिंग कल्चर से जुड़े कदम उठाए गए।
0: स्टैनली गवर्नमेंट स्कूल का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें लोग जैन के नाम से जानती थी। स्टैनली में जन्मे और एमएमएम के प्रमुख नेताओं में शुमार जैन कतारी ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। खासकर विदेश व्यापार से जुड़ी वार्ताओं में उनकी अहम भूमिका रही। उनके परिवार के लिए ये फैसला भावुक करने वाला होने के साथ साथ गर्व का विषय भी है। जैन कतारी का नाम किसी स्कूल से जुड़ना उनके लिए उनकी यादों को जीवित रखने का एक माध्यम है। उनकी बेटी लिलका कतारी ने इस बारे में राजमीना सतमुनी से बात की। विवरण गीता सुनाई का है।
2: Je pense que déjà que ce soit associé à une école et quelque part.
3: मेरे विचार से इसको एक स्कूल से जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और ये एक ठोस संदेश देता है कि हमेशा काम करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और शुरुआत को समाप्त नहीं होने देना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे लिए ये उम्मीद का संदेश है, इलाके और देश के सभी छात्रों के लिए।
2: Bien sûr, de la région, mais aussi du pays.
0: ओशवा में 7 महीने के बच्चे की कथित हत्या का मामला सामने आया। मामले में बच्चे के 30 वर्षीय पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि जांच जारी है। पिता ने कहा कि उसे शैतानी आवाजें सुनाई दे रही थी। बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस के किसानों ने कुल मिलाकर अपनी कृषि उपज पहले की तुलना में कम कीमत पर बेची और साल की शुरुआत की तुलना में सब्जियों के मामले में ये गिरावट कहीं अधिक स्पष्ट रही। खास तौर पर गाजर के उत्पादकों को मिलने वाली कीमत में 54% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन ध्यान रही, इसका ये मतलब जरूर नहीं है कि बाजार या सुपरमार्केट में आपको सब्जियां भी कम कीमत पर मिल रही हों। आदरणीय वाले अब ज्यादा जानकारी दे रही हैं विस्तार से अभी उदय के विवरण के साथ।
1: जब स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस उत्पादक मूल्य यानी कि प्रोडक्शन प्राइस की बात करता है, तो इसका मतलब उस कीमत से है जो किसान को अपना उत्पाद बेचते समय मिलती है उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले। अप्रैल और जून के बीच इस साल के पहले 3 महीनों की तुलना में इन कृषि

0: कीमतों में औसतन 2.6% की गिरावट आई है। सब्जियों के मामले में ये रुझान और भी साफ दिखाई देता है। पहली तिमाही में इनकी कीमतों में लगभग 2.2 की कमी आई थी, जबकि दूसरी तिमाही में ये गिरावट 8.9% तक पहुंच गई। सबसे प्रमुख उदाहरण गाजर का है, जिसकी कीमत में 54.6% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। साल की शुरुआत में महंगा हुआ अनानास भी सस्ता हुआ। इसके उत्पादक मूल्य में 20.4% की कमी आई है। इसके विपरीत पशुपालन से जुड़े कुछ उत्पादों के लिए उत्पादकों को बेहतर दाम मिले हैं। अंडे और मवेशियों के लिए 6% अधिक और दूध के लिए 8.6% अधिक है। लेकिन उत्पादक के स्तर पर आई इस गिरावट का मतलब ये नहीं है कि आपके बाजार के थैले में भी कीमतें सीधे उतनी ही कम हो जाएगी। इन दोनों के बीच परिवहन और व्यापारिक मार्जिन जैसी लागतें भी जुड़ती हैं।
1: आज सोमवार दोपहर 12 बजे से कैसिनो दे मोरिसा के कुछ कर्मचारी और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन सदस्य राष्ट्रसभा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इन कर्मचारियों के सामने उनके पेशेवर भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। दरअसल कुछ हफ्ते पहले कैसिनो प्रतिष्ठानों में लगाए गए एक नोटिस में संभावित रूप से कैसिनो के संचालन को किसी अन्य पक्ष को सौंपने यानी टेक ओवर के लिए टेंडर जारी किए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके लिए ऑफर जमा करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त तय की गई थी, लेकिन इसके बाद से कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अब तक इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस स्थिति को लेकर कैसिनो दे मोरिस के करीब 600 कर्मचारी चिंतित हैं। कैसिनो एम्प्लॉयज यूनियन के नेगोशिएटर अश्विन गुदे के अनुसार कर्मचारी इस प्रदर्शन के जरिए अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। सरकार अपने डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर रही है। शुक्रवार 21 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में एक ऐसी पहल पर चर्चा की गई जिसका उद्देश्य सरकारी पोर्टल और सरकार की विभिन्न वेबसाइटों को आधुनिक बनाकर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में बदलना है। ये प्लेटफॉर्म स्मार्ट, एकीकृत और नागरिकों की जरूरतों पर अधिक केंद्रित होगा। राजविनास्तामुनि की रिपोर्ट पर अभ्युदय का विवरण।
0: इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करना और नागरिकों व व्यवसायों दोनों को एक तेज, अधिक व्यक्तिगत और सुगम डिजिटल अनुभव प्रदान करना है। ये पहल सरकारी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन में तेजी लाने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है और ये सीधे डिजिटल ब्लूप्रिंट से जुड़ी हुई है। इस दस्तावेज में मुख्य रूप से नई तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल समाधानों के उपयोग को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। ऐलान किए गए उपायों में एक एकीकृत सरकारी पोर्टल यानी कि यूनिफाइड गवर्नमेंट पोर्टल और मोबाइल आईडी की स्थापना शामिल है, ताकि सार्वजनिक सेवाओं तक अधिक सरल और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जा सके। सरकार का लक्ष्य विभिन्न वेबसाइटों पर बार बार जाने की जरूरत को कम करना, जिससे नागरिक विशेष रूप से अपने मोबाइल फोन के जरिए सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सके।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट के पास पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज डूब गया है। जहाज पर कुल 24 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि बाकी 22 लोगों की तलाश जारी है। जहाज का नाम एमवी ओशन विनर है और ये उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से चीन की ओर लौह अयस्क लेकर जा रहा था। यह पारादीप तट के करीब 230 से 240 नॉटिकल मील दूर डूबा। बचाव अभियान के दौरान पास से गुजर रहे MT Aesopus नामक एक व्यावसायिक जहाज को तलाश अभियान में लगाया गया। इसी जहाज ने करीब रात 8 बजे 2 लाइफ राफ्ट से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों को चिकित्सा सहायता दी जा रही है और उनकी पहचान की पुष्टि की जा रही है। जहाज पर सवा 24 लोगों में 20 चीनी, 3 म्यांमार के और 1 बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बाकी लोगों की तलाश के लिए कई जहाजों के साथ बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है।

बढ़ते हैं मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। मौसम का हाल, आम हालत हमारे इलाके पर कमज़ोर दबाव का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय दोपहर बाद में पश्चिमी इलाकों में कुछ बादल विकसित होंगे और थोड़ी वर्षा होगी। अन्य इलाकों में मौसम सुहाना होगा। शाम के समय पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्रांतों वाले इलाकों में रह रहकर बारिश होगी। बाद में आमतौर पर विशेषकर पूर्व और सेंट्रल प्रांतों वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। हवा सुबह के समय हल्की बहेगी और रात के दौरान भी हल्की रहेगी। दिन के दौरान हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा, सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त शाम 5:59 पर।

0: तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और हमारे कंसल्ट पर सहयोगी कादर का सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, and NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। ओडिटलिन मोदालबिया में 76 साल की 76 years old की श्री चंदर परमेश्वर जिन्हें अंजित के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर मोदालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 2 PM एवेन्यू फ्लोरियो प्लेजेंस रोजिल में 43 साल की 43 years old की कुमारी तिलंजलि दुबराज जिन्हें तिलन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनकी मां राजकुमारी दुबराज के घर रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टूडे एट 10:30 AM अली तमारे बॉम्बू में 89 साल की 89 years old की श्री कृष्णा कहानू जिन्हें बुलुम एक्स पीओ लमेक के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी तारा कहानू के घर बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM रॉय रोड कोचिमलितिया में टैक्सी स्टैंड के पास 93 years old की श्री रोहित पांचू जो मोकाफ्लाग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में काम करते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे सुगा पांचू के घर कोचिमलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में कोचिमलितिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 9:30 PM Avenue Péadrix, Morcellement sans souci, Montagne Blanche mais Avenue Péadrix, Morcellement sans souci, Montagne Blanche mais 76 साल की 76 years old की श्रीमती मीराबाई धोंदी पैदाश नाम हुरपा और जिन्हें सेवन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे शिवराम धोंदी के घर मोताइम ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टूडे एट 9:30 PM केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 years old की श्रीमती डेजी रानी सिबन जिन्हें आरती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनकी मां चिंता सिबालक के घर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाजिलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टूडे एट 10:30 AM

रायरोड बुबासे में ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। रू सियर्ज अल्फ्रेड बुबासे में, रू सियर्ज अल्फ्रेड दे बुबासे में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंद नरसू, श्री आनंदा नरसू जिन्हें आनंदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे लाशा पेलाओ दौ तेलियन सन बोबासे से उठाकर सबसे पहले एडवेंटिस जो 7वें गिरजाघर ले जाई जाएगी बोबासे में, फिर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहत की शमशान भूमि, क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रिगालिन फोंटेन 23 लेओशे ते रोज में, रिगालिन फोंटेन 23 लेओशे ते रोज में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री गोबिन रिगा जिन्हें गाबी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर लेओशे ते रोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ले जाएगी, क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

तो बस इसी प्यार का वास्ता आपसे जुदा हो रही है इस वादे के साथ कि कल वापस मुलाकात होगी 12 से 2 के बीच 6:53 एंड थोड़ी देर में मॉर्निंग विद वेदिता के साथ. हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे सेफ.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती 7 बजे है.
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
3: नॉर्थ साउथ
4: 103.5
3: ईस्ट वेस्ट
4: 96.4
3: सेंटर
4: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Morning beat.
6: Oh God, one more remix.
5: A good beat for your morning show.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show.
1: RM2 Radio Musti.
2: A very good morning. सुबह के 7:13 तेरह मिनट हो गए हैं. तेरा क्या होगा कालिया? Yes, Monday 24th of August. आप सबों का स्वागत है. कैसे हैं आप लोग? वैसे हर एक morning किसी के लिए

0: सेम नहीं रहता. कभी कभी लोग जब उठते हैं मॉर्निंग में ट्यूसडे का जो फीलिंग होता है, वेंसडे का, फ्राइडे का तो कुछ अलग होता है, कमाल का होता है. मंडे का पता नहीं क्यों लोग थोड़े से रुखे सुखे होते हैं, लेकिन डोंट वरी, मंडे आ गया तो धीरे धीरे सैटरडे संडे भी आ जाएगा. तो चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, स्वागत है आप सबों का आप ही के अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है मॉर्निंग बीट.
1: Du 14 au 31 août, profite jusqu'à 50% discount. Oui, vous êtes bien attendez. Carreaux, robinet et sanité à top qualité avec du rat, 50 tranquillité. T'as même dit ça? T'as même ça? Métrique, une enseigne du groupe KRMG.
2: RM2 Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए जी, भी समय हो गया है आपके लिए। हम लेकर आए हैं एक गेम और यहाँ पर आपको मौका मिलेगा इनाम जीतने का। आते हैं हम मॉर्निंग में और आपके लिए, चलो स्माइल करने का एक रीज़न तो लेकर आते हैं। तो हमारा जो गेम है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द गेम इज़ पावर्ड बाई टिकट बॉक्स डॉट एम यू एंड लाइक वी ऑलवेज से कि जब आप आँख बंद करके एक म्यूजिकल जर्नी के बारे में सोचते हैं, एक ऐसा जर्नी फिल्ड विद मेलोडीज, मेमोरीज एंड टाइमलेस वॉइस ऑफ शान। येस, वी टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली शान। तो अभी उनके कॉन्सर्ट में जाने का आपको मौका मिलेगा। कैसे? वेल, नाउ यू गोइंग टू प्ले विद रेडियो मस्ती एंड आपको मिल सकता है एक चांस टू विन अ गोल्ड टिकट, और ये होगा टू असिस्ट द स्पेक्टेक्युलर शान लाइव कॉन्सर्ट, वन वॉइस वन स्टेज वन अनफॉर्गेटेबल नाइट एट SBICC ऑन 5th September रात के 8 बजे से लेकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं पूरी रात। एंड इट्स प्राउडली ऑर्गेनाइज बाय ticketbox.mu। तो चलिए, यहाँ पर हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए हम सवाल लेकर आए हैं। हमारे सवालों को आप अच्छे से सुनिएगा और फिर उसके बाद हमें जवाब दीजिएगा ऑन 5491294। याद रखिए, आपको पूरे नाम और पति के साथ आपको ये जवाब देना होगा। विच इंटरनेशनल स्पोरिंग एक्सपीरियंसिस कैन यू बुक थ्रू ticketbox.mu? विच इंटरनेशनल स्पोरिंग एक्सपीरियंसिस कैन यू बुक थ्रू ticketbox.mu? आपको मुझे जवाब देना है ए फॉर्मूला 1, बी प्रीमियर लीग या सी बोथ ए एंड बी। आपको जल्दी से जवाब देने हैं ऑन 5491294।
1: RM2
3: रेडियो मस्ती, फील द

RM2, Radio Musty, in the mix.

0: जी तो यहां पर आपके लिए सवाल था और आपने मुझे सही जवाब दिया है 1549 1294 एंड हमारा सवाल था आपके लिए आपको बताना था हमें वैसे मैं फिर से सवाल दोहराती हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोगों ने मैं सही जवाब दिया है सो विच इंटरनेशनल स्पोर्टिंग एक्सपीरियंसेस कैन यू बुक थ्रू टिकट बॉक्स डॉट एम यू इज इट ए फॉर्मूला इज इट बी प्रीमियर लीग इज इट बोथ ए एंड बी द राइट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी और यहाँ पर आपने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है तो जिसके चलते आपको मिल सकता है यहाँ पर इनाम हमारे साथ खेलने पर येस आई सेड इट कि आपको मिल सकता है अ गोल्ड टिकट टू असिस्ट स्पेक्टेकुलर शान लाइव कॉन्सर्ट शान इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट बिलवड प्लेबैक सिंगर्स नोन फॉर हिज स्मूथ साउंडफुल एंड वर्सटाइल वॉइस एंड आपको पता है लेट 90s में वो इतने फेमस हो गए थे बॉलीवुड में अपने रोमांटिक मेलोडिक और फील गुड सॉन्ग्स के साथ कि बस सबके होठों पे उन्हीं के गाने थे और सालों के बाद शान ने कितने कितने सारे गाने हमें दिए हैं इतने सारे हिट्स अक्रॉस हिंदी सिनेमा एंड इंडियन पॉप म्यूजिक अर्निंग अ स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग अक्रॉस जनरेशंस उनकी आवाज़ जो है ना इसमें एक वॉर्म है वो जब स्टेज पे अपना शो करते हैं इतना एफर्टलेसली अपना प्रोग्राम करते हैं और उनमें ये एबिलिटी है टू कनेक्ट इमोशनली विद ऑडियंसेस एंड बस इसी के चलते वो एक बहुत ही पॉपुलर लाइव परफॉर्मर बन गए हैं So you can enjoy the charismatic energy, soulful voice and timeless melodies of Shine Alive on SBICC stage on 5th September as from 8 p.m. Ab ye kaun hai jinko mila hai gold ticket jante hain? ये है वृषभ सिरकिसुन कंग्रेचुलेशंस आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है तो आपको ये टिकट मिल रहा है एमबीसी आपको आना पड़ेगा अपने आईडी कार्ड के साथ सुबह 9:30 बजे से सफर के 3:30 बजे तक आपके पास टाइम है फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे कंग्रेचुलेशंस हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट आपको फ़ोन करेंगे और आपको देंगे सारी डिटेल्स और ये है वो गाना जो आप सुनने वाले हैं
1: बिन पूछे मेरा नाम और पता
0: पर इनका नाम तो सबको पता है दिस इज शान
1: रस्मों को रख के परे
0: वक्त थम जाए

0: Yes, you're listening to Morning Beat Vidita के साथ आपके अपने रेडियो मस्ती पर सवाल हमने किया था जवाब आपके पास है.
1: A good beat for your morning show. RM2 Radio.

You're listening to Radio Masti. शान एंड श्रेया घोषाल आपके लिए फ्रॉम द मूवी पीके एंजॉय करें थे गाना ड्राइव करें बी केयरफुल ऑन द रोड ओके आराम से प्यार से एंड जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें उनको हैप्पी बर्थडे और जिनको आप सरप्राइज करना चाहते हैं लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से डोंट फॉरगेट टू सेंड मी उनका नाम और उनका फोन नंबर ऑन 5499 1294

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: हेलो प्रतिमा जी.
3: हेलो नमस्ते.
2: नमस्ते जी प्रतिमा जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग.
3: मैं ठीक हूँ, और आप?
2: मैं बिल्कुल. आपको पता चल गया कौन है?
3: हाँ बिल्कुल.
2: अरे बाप रे, क्या मुझे लगा कि बहन जी प्रतिमा आज हाथ आई हैं. आज तो क ख ग हम पढ़ के और पढ़ा के रहेंगे, लेकिन आपने तो यहाँ पर, चलो कोई नहीं है. प्रतिमा जी आपको पता ही है कि ये रेडियो बस्ती है, और जब इस टाइम पे फोन बजता है तो क्या होता है?

0: from Radio Masti.
1: प्रतिमा जी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हैं. और आज आपका जन्मदिन है तो चलिए, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई थी आपको विश करने के लिए. और मुझे नहीं पता ये मैसेज किसने भेजा है, लेकिन जन्मदिन की बहुत बहुत सारी बधाइयां आपको.
2: धन्यवाद बेनीता जी, एम सी वालों को भी बहुत धन्यवाद. और जिसने भी ये सरप्राइज किया है मेरे लिए, मुझे लगता है वंदना जी ने किया होगा.
1: अच्छा जी,
2: उनको भी बहुत धन्यवाद.
1: बहुत धन्यवाद आपको. शुभ दिन. लगता है कि आप इस समय अभी या तो फिर गाड़ी चला रही होंगी, या तो फिर कहीं पे आपकी आवाज़ थोड़ी बैठी होंगी कहीं बस में. तो बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और आपको हम बता दें कि लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से आपको मिल रहा है एक वाउचर, जो आपको आकर एमबीसी कलेक्ट करना पड़ेगा. सो आज नहीं तो कल सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे के बीच अपने आईडी कार्ड के साथ, आज नहीं तो कल आप भी आ सकते हैं. ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. हमारे से शुभ दिन और जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं.
2: धन्यवाद.
1: शुभ दिन. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद.
3: Morning beat. Oh God. One more remix. A good beat for your morning show.
4: RM2 Radio Musti in the mix.

0: रंबा हो संभा हो हम तो कहेंगे थंबा हो, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है यही जानने का टाइम हो गया है। जी हाँ, घड़ी मिलाते जी ने सुबह के 7:40 हुए हैं। चलिए मिलते हैं हमारे दोस्त अरविंद से।
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.
0: And yes, चलिए दिल से स्वागत करते हैं on this Monday morning हमारे दोस्त अरविंद का। और भाई हमारी साइकिल के भराने के बारे में बात कर रहे थे, चलिए उनसे मिलते हैं। Good morning अरविंद।
4: Good morning आपको। Good morning RM2 listeners, the latest from the sports world. ब्रिटेन की महारानी बनी हमारी लाडली किम्बर्ली लेको डेबियो पियना। साइकिलिंग की महारानी ने ब्रिटेन टू टू डे ग्रैंड ब्रिटेन जीता। आजे इंश्योरेंस सुडाल के साथ किम्बर्ली चैंपियन बनी। पांचवें और आखिरी चरण में किम ने अपना पहला स्थान बचाए रखा। हिस्ट्री मेड, किम्बर्ली पहली साइकिलिस्ट है मॉरिशस से ब्रिटेन टू जीतने वाली। बधाई हो चैंपियन किम्बर्ली को, हैट्स ऑफ मॉरिशस का सलाम ब्रिटेन की महारानी किम्बर्ली को। सीजन की शुरुआत एक ड्रॉ के साथ, एक पहला अंक लिवरपूल के लिए। न्यूकासल यूनाइटेड के मैदान में जाकर ड्रॉ करना खराब परफॉर्मेंस नहीं है, पर लिवरपूल की टीम में काम बाकी है। इंजरी टाइम के आखिरी मिनट में पेनाल्टी पर ज़ोबोस्लाई ने लिवरपूल को बचाया। न्यूकासल यूनाइटेड 2-2। मैच का पहला गोल इलांगा ने स्कोर किया। फर्स्ट हाफ में द मैगपाइज 1-0 से आगे थे, फिर सेकंड हाफ में कोडी गाकपो ने इक्वलाइज किया, पर तुरंत विलॉक ने न्यूकासल यूनाइटेड को आगे भेजा। फिर जो होना था वही हुआ, नए खिलाड़ी म्यूनोस पर पेनाल्टी और ज़ोबोस्लाई का गोल, हिसाब बराबर। एंटोनी इराओला का पहला प्रीमियर लीग मैच लिवरपूल के साथ और पहली कमाई, पहला अंक। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिला, हार से बचने का हल मिल पाया लिवरपूल को। एस्टन विला के लिए दर्दनाक शुरुआत, 4-0 से ब्राइटन ने एस्टन विला को चकनाचूर किया। लिंडेलोफ का ओन गोल, हिशलवुड का डबल, ब्राइटन के लिए इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती थी। ब्राइटन लीग में टॉप हैं। मैनचेस्टर सिटी के लिए कमबैक विन, बोर्नमुथ के खिलाफ 84वें मिनट तक सिटी 1-0 से हार रही थी, पर जाकर मार्गुए और वाजोल मसीहा बने दोनों गोल चर्की के पास पर। बोर्नमुथ का गोल तावेनी ने स्कोर किया। सो वी कैन रैप अप, आर्सेनल की जीत, मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटनहम हॉटस्पर की हार, लिवरपूल का ड्रॉ मैच और ब्राइटन बना लीडर। आज लंदन डर्बी, फुलहम वर्सेस चेल्सी। एस्टन विला की टीम में ओली वाटकिंस नहीं था, शायद वो जाने वाला है, कोच एमरी ने बताया। प्रश्न वाटकिंस से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है। खबर है अल हिलाल

0: उसे साइन करने वाला है। इंग्लैंड से दूर टर्की में मोहम्मद सलाह ने अपने नए क्लब त्रबजोंस्पोर के लिए 2 गोल स्कोर किया। उसकी टीम ने इस्तांबुल बसाकशहीर को 2-1 से हराया। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन ने बर्नले को 3-1 से जलाया। इधर स्पेन के ला लीगा में बम्बारी बार्सिलोना की ओर से 5-0 से एल्चे को पछाड़ा। राफीना का डबल, लोपेज का डबल, अदेयेमी का 1 गोल। एटलेटिको मैड्रिड का ड्रॉ मैच 2-2 विलारियल के खिलाफ। रिताफे ने रेसिंग सांतोंडे को 1-0 से हराया। इटली के सेरी आ में टोरिनो 1 एसी मिलान 2, अटलांटा 2 सासुलो 1, वेनेजिया 0 लेचे 2, फ्रोजिनोने 0 यूवेंटुस 1। फ्रांस के लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मे के लिए पहले मैच में ही फेरान टोरेस का डबल, पर पेरिस सेंट जर्मे ने मैच ड्रॉ किया 2-2 रेन के खिलाफ। अंजे 0 लील 2, ले हावर 0 मोनाको 1। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में डच ग्रैंड प्री में लैंडो नॉरिस की जीत हुई। ये उसकी लगातार दूसरी जीत है। क्रिकेट में श्रीलंका वर्सेस इंडिया दूसरा टेस्ट मैच का पहला दिन। भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही है। पहले दिन 300 रन बना चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर। देवदत्त पदिकल 117 रन बनाकर आउट हुआ। शुभमन गिल भी हाफ सेंचुरी पूरा कर पाया। लोकल स्पोर्ट्स की बात करें, घुड़दौर में कल ट्रिपल क्राउन कुंभरे वियरा के नाम। फुक्यूना स्टेबल का चैंपियन कुंभरे वियरा अभी तक अपराजित है। ग्रुप 1 बोरुशस डर्बी में उसकी जीत हुई। शॉडिमास में एक के बाद एक कॉन्सिक्यूटिव 9th विन। कल की रेस मीटिंग की शुरुआत गजादर स्टेबल से हुई, रिवर हॉक ने किया, और समापन भी गजादर स्टेबल के साथ पेव्ड विव गोल्ड। रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में कल स्काईलॉक और सिलेक्शन कोतेज के बीच मैच ड्रॉ, 1-1 पेनाल्टी पर स्काईलॉक गुडलैंड्स क्वालिफाई। और शुरू में कहा था, फिर से कहेंगे, कहना बनता है किम्बर्ली लेकू दे ब्यूयो पेना साइकिलिंग की हमारी महारानी, अद्भुत लाजवाब ऐतिहासिक परफॉर्मेंस, ब्रिटेन 2 जीतना वर्ल्ड क्लास है। बधाई हो, ब्रावो किम्बर्ली। हैव अ नाइस टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती एंड हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच भाई। किम्बर्ली ने तो सच में हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट जो गाना होगा उनके लिए होगा। थैंक यू अरविंद।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: मॉर्निंग बीट
4: James. RM2 Radio Musty in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती मॉर्निंग बीट. आवेदिता के साथ सुन रहे हैं. 7:50 हुए हैं और हम आपके लिए एक और गेम लेकर आए हैं. अब आप सोचेंगे क्या यार कितने सारे इनाम लेकर आए हो. हाँ हाँ, मॉर्निंग में रेडियो मस्ती में ये होता है. अब चलिए हम आपको बता दें आपको क्या मिल रहा है. आपको मिलेगा 2 एंट्री टिकट्स टू असिस्ट कथक की कहानी बॉलीवुड की जुबानी एट कोडा आर्ट्स सेंटर. जी हाँ, 90-minute डांस थिएटर प्रोडक्शन सेलिब्रेटिंग द जर्नी ऑफ कथक फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स एज अ classical storytelling tradition to its iconic presence in Bollywood and Indian cinema. A vibrant mix of dance, music, cinema and storytelling bringing together classical tradition and Bollywood nostalgia. और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्ले है इज डायरेक्टेड बाय विदुषी अर्पिता बनर्जी. तो ये हो रहा है सैटरडे 29 अगस्त को शाम 7:30 एंड संडे 30 अगस्त को शाम 6 बजे. और अगर जीतने वाले को मिल रहा है ये इनाम तो डेफिनेटली उनको कलेक्ट करना पड़ेगा ये टिकट एट MBC. अब चलिए इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत सा ये प्ले. तो आपको इसे एंजॉय करना है. चलिए इसी के साथ आप मुझे ये बता दीजिए. जी हाँ, इसी के साथ आप मुझे ये बता दीजिए कि जो हमारे एक्टर हैं आमिर खान, जी हाँ आमिर खान, उन्होंने आज प्रोड्यूसर पहला फिल्म कौन सा प्रोड्यूस किया था. जी हाँ, आपको मुझे ये बताना है कि आमिर खान ने अपना पहला फिल्म कब प्रोड्यूस किया था. 1549-1294
0: RM2
1: Radio Musti
3: Shan live in Mauritius Saturday 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
4: Tech Mag, powered by
5: 365. Bien plus encore.
6: Thinking of selling or giving away your old smartphone? Before you do, make sure your personal data doesn't go with it. Many people believe deleting photos or performing a quick factory reset is enough. While modern smartphones encrypt your data, security experts still recommend taking a few extra steps before handing your device to someone else. Start by backing up your photos, contacts, and files. Then sign out of your Apple, Google, and other personal accounts, remove your SIM card and any memory card, and disable features such as Find My iPhone or Find My Device. Once that's done, perform a full factory reset to erase the phone's contents. Taking just a few minutes to prepare your phone properly can help protect years of personal photos, messages, passwords, and financial information. After all, when you sell your phone, the only thing the new owner should receive is the device, not your digital life.
4: Tech Mag was powered by
5: 365. Bien plus encore.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
0: झंकार बीट्स
1: RM2

0: You're listening to Morning Beat Verita के साथ हमने आपसे सवाल किया था हमने पूछा था कि आज प्रोड्यूसर आमिर खान ने किस मूवी के साथ शुरुआत की थी and the right answer is 2001 की लगान अगर आप मुझे सही जवाब नहीं देते तो मैं चार गुना लगान ले लेती आपसे लेकिन यहां पर मैं आपको इनाम देने जा रही हूं क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है यस अभी समय हो गया है जानने का कि हमारे विनर कौन है चलिए जानते हैं सही जवाब देकर यहां विनर बनी है विदिशा सिनोट कांग्रेचुलेशंस आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है आपको मिल रहा है दो एंट्री टिकट्स टू असिस्ट द कथक की कहानी बॉलीवुड की जुबानी एट गुड ऑड्स ये हो रहा है 29th of August 7:30 PM और संडे 30th August एट 6 PM एट गुड ऑड्स सेंटर आपको मैं बताऊं कि आपको आना है एमबीसी अपने आईडी कार्ड के साथ टू कलेक्ट योर टिकट्स ये होगा मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 से दोपहर के 3:30 के बीच
1: मॉर्निंग बीट चेंज RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: सुबह के 8 बजे हैं. आठ बजे के भोजपुरी समाचार में सब कोई के स्वागत करा जाता है. सब कोई के नमस्ते या प्रणाम. सबसे आगे हमने देश के बारे में बतियाओ. अब जा स्कूल में नवा शैक्षणिक सप्ताह शुरू भइल. एक सप्ताह हो गल बाटे पर ग्रेड 11 के छात्र लोग खातिर SC परीक्षा से आगे होला तैयारी के बीच मॉक परीक्षा जोन होल ओका नतीजा चिंता के बारे में बाटी. शिक्षा मंत्रालय के क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ा के मुताबिक 20 गो सरकारी कॉलेज में मॉक परीक्षा करा गल जिकर कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कमती रहल बाटे. जबकि बात करब जा मैथमेटिक के बारे में गणित के बारे में त खाली 63% यानी कि 37% लयिका इमें पास होल हवन जा. स्थानीय सरकारी पाठशाला यानी स्थानीय गवर्नमेंट स्कूल के नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखल जाए जिनकरा प्यार से जैन के नाम से भी आदमी जानत हलन जा. स्थानीय के ई बेटा और MMM के प्रमुख नेता में शुमार जयन कतारी कई गो मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाले रलन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास करके विदेश व्यापार से जुड़ल बातचीत में अपन पहचान बनैले रलन. अब बात एगो दुखद घटना के बारे में. होशबुआ में 7 महीना के एगो लड़का के कथित हत्या के मामला सामने आल बाटे. पुलिस के अनुसार 7 महीना के लड़का जॉन आद्रियानो केलियानो पेरिन अपन कमरा में सुतत रहल जब उकर माँ के साथी 30 बरिस के जॉन डैनियल पेरिन घर में आल और कुछ नहीं बोलक और कुछ देर बाद वो घर से निकल गल. लड़का के माँ कमरा में गल पर लड़का हुआ नहीं रहल. ओके खोजल गल और ओके लुगा के एगो ढेर में एगो चादर में बांधल पावल गल. लड़का खूने खून रहल लतपत रहल खून में. ओकर सांस नहीं चढ़त रहल और ओकर दाहिने जांग पर घाव लगल रहल. घबराहट में माँ पुलिस के जनैलक और पुलिस हुआ आल त देखलक कि लड़का के प्राण चल गल रहल. मौका पर पुलिस डॉक्टर लड़का के मौत की पुष्टि करलक. आर ई मामला में उ माँ के साथी यानी कि जॉन डैनियल पेरिन के पुलिस पकड़ के गल. दूसरा समाचार में स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस बोले बाटे कि अप्रैल से जून महीना के बीच मॉरिशस के किसान अपन उपज औसत पहले के तुलना में कमती दाम में बेचले हवन जा. सब्जी के दाम में बहुत हाली गिरावट आल जिकर में गाजर के उत्पादक यानी कि जो प्लौते हवन जा खेतीहर हवन जा उ लोग के मिले होला कीमत में 54% से जस्ती भारी कमी दर्ज करा गल बाटे. हालांकि एकर मतलब ई नहीं है कि बाजार या सुपरमार्केट में उपभोक्ता के सब्जी सस्ता मिलल बाटे. और आज जलंदी के दिन के 12 बजे से काजिनो दे मोरिस के कुछ कम करवा लोग और लोग के यूनियन प्रतिनिधि राष्ट्रीय सभा के आगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करियन जा. करीब 600 कर्मचारी के भविष्य के देख के अनिश्चितता बनल बाटे. कहे कि काजिनो के संभावित टेकओवर खातिर टेंडर प्रक्रिया के बाद उलो के अबले आगे के प्रक्रिया के बारे में कोनो स्पष्ट जानकारी नहीं मिलल बाटे. दूसरा देश के समाचार में बंगाल के खाड़ी में उड़ीसा

0: प्रोजेक्ट की भीरी पनामा के झंडा हुला एगो मालवाहक जहाज डूब गल बाटे, जहाँ पर सवा 24 गो आदमी रहल, जेकर में से 2 गो के बचावल गल बाटे, जबकि दूसर 22 के अभी खोजल जाता, जेकर में भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ देवतवन जा आर ई बचाव काम में उन लोग आगे बढ़े खातिर सब संभव कोशिश करत हुआ जा। तो एक संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल, ध्यान से साथ दिलाओ का खातिर धन्यवाद, संगे रह अभी 8:04 होल बाटे।
1: मॉर्निंग बीट, ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो,
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: न्यूज काम के लिए लेट हो रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको बता दूं, सुबह के 8:09 हुए हैं। यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती और मैं हूं वरिता, आपका साथ दे रही हूं आपके मॉर्निंग बीट में। कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है सब? हैप्पी हैप्पी हैप्पी लवली मंडे मॉर्निंग। चलिए इस लवली मंडे मॉर्निंग में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। दिस इज आवर सेकेंड आवर ऑफ मॉर्निंग बीट और मौसम कैसा रहेगा ये जानने के लिए समय हो गया है। चलिए मिलते हैं अश्विता से।
0: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: आम हालत हमारे इलाके पर एक कमजोर दबाव का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहाना होगा, सिवाय दोपहर बाद में पश्चिमी इलाकों में कुछ बादल विकसित होंगे और अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। शाम के समय पश्चिम, उत्तर पश्चिम तथा सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी और बाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और देर रात में पूर्व तथा ऊंचाइयों पर थोड़ी देर के लिए वर्षा होगी। हवा हल्की बहेगी सुबह के समय तथा रात के दौरान पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त शाम 5:59 पर।
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: रेडियो मस्ती सुबह के 8:24 हुए हैं. यस गाइस, यू आर लिसनिंग टू द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हमारे रेडियो मस्ती पर इन योर मॉर्निंग बीट. और मैं हूँ वेदिता. आप घर से निकल

चार्जर भी छोड़ दिया तो ऐसा करो बादाम खाया करो बहुत अच्छा होता है और थोड़ा सा दिमाग का भी एक्सरसाइज किया करो अच्छी अच्छी चीजें सोचा करो ऐसा करो 5 मिनट बैठ जाओ आप सोचते हो कि 5 मिनट बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है ना दिमाग में आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत कुछ सोचते हैं एट वन टाइम जो लोग बहुत कुछ सोचते हैं दिमाग जो होता है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता इसीलिए आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो मैं यही कहूंगी कि सुबह अगर आप लोग 5 मिनट पहले उठ जाएं 5 मिनट ज़्यादा नहीं अलार्म लगा दो 5 मिनट का बस बैठ जाओ चुपचाप और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो अच्छी अच्छी बातें करो और हमेशा मैं कहती हूँ मॉर्निंग में उठने के बाद हमेशा स्माइलिंग चेहरे देखा करो अगर आपको लगता है कि रोज़ मम्मी चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के उठाती है तो ऐसा करो मम्मी की एक स्माइलिंग फोटो है ना वो अपने कमरे में लगा दो उठकर पहले वही देखना माता का आशीर्वाद लेके घर से निकलना अच्छा अच्छा होगा हाँ बिल्कुल या तो फिर अपने आप को देख लो आईने में एक अच्छा से स्माइल कर दो फिर क्या पता आपका पूरा दिन ऐसे स्माइल करते हुए बीतेगा सब देखेंगे कहेंगे वाह वाह क्या बात है जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ

0: जब हम कहते हैं कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना जरूरी होता है तो हम ये नहीं कहते कि भाई 30 मिनट के लिए आपको आपको भागना ही है, कुछ करना ही है। पता है एक्सरसाइज क्या होता है? एक्सरसाइज होता है जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो थोड़ा सा, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। मॉर्निंग में जैसे आप उठते हो तो 5 मिनट बैठ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, फिर उसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, फिर उसके बाद ब्रश करने के बाद अगर हो सके तो, अगर आपके पास स्टेज है, हाँ ये भी थोड़ा भागना नहीं है, स्टेज में अगर आप आराम से आ रहे हैं, चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये भी एक तरह से एक्सरसाइज होता है। जब आप काम पर आते हैं तो लिफ्ट के बजाय अगर आप स्टेज लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है। एंड क्या है ना कि हमारी जो बॉडी है, आप जब काम करते हो तो एक ही जगह पे बैठे रहते हो तो आपका हाथ हिलता है, आप कंप्यूटर के साथ काम करते हैं तो कभी आपने नोटिस किया है कि हाथों में, शोल्डर में पेन होने लगता है? तो क्या होता है कि आपको कम से कम हर एक घंटे के बीच में उठकर थोड़ा सा अपने बॉडी को स्ट्रेच करना होता है। एक घूंट पानी पीने चली जाइए या तो फिर थोड़ा सा आप चल लीजिए, तो अपने पैरों को भी थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज कराना चाहिए, थोड़ा सा चलना चाहिए, फिर वापस आके घंटे में एक टाइम पे आपको उठना चाहिए और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए। इससे बड़े फायदे होते हैं। और दूसरा ये भी है कि स्पोर्ट्स जो है सिर्फ सुनने का नहीं है, करने का भी होता है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए खुशी का अभी माहौल छाया हुआ है, चलिए भाई। और हमारे साथ अरविंद हैं जिन लोगों ने हमारा जो स्पोर्ट्स है मिस कर दिया। एक बार फिर चलिए जानते हैं हमारे स्पोर्ट्स अपडेट में क्या चल रहा है।
1: स्पोर्ट्स न्यूज़ रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
2: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। ब्रिटेन की महारानी बनी हमारी लाडली किम्बर्ली लेको देबियो पिना। साइकिलिंग की महारानी ने ब्रिटेन टू डे ग्रैंड ब्रिटेन जीता। आजे इंश्योरेंस सुडाल के साथ किम्बर्ली चैंपियन बनी। पांचवें और आखिरी चरण में किम ने अपना पहला स्थान बचाए रखा। हिस्ट्री मेड, किम्बर्ली पहली साइक्लिस्ट है मॉरिशस से ब्रिटेन टू जीतने वाली। बधाई हो चैंपियन किम्बर्ली को, हैट्स ऑफ, मॉरिशस का सलाम ब्रिटेन की महारानी किम्बर्ली को। सीजन की शुरुआत एक ड्रॉ के साथ, एक पहला अंक लिवरपूल के लिए। न्यूकासल यूनाइटेड के मैदान में जाकर ड्रॉ करना खराब परफॉर्मेंस नहीं है, पर लिवरपूल की टीम में काम बाकी है। इंजरी टाइम के आखिरी मिनट में पेनाल्टी पर ज़ोबोस्लाई ने लिवरपूल को बचाया। न्यूकासल यूनाइटेड 2 लिवरपूल 2। मैच का पहला गोल इलांगा ने स्कोर किया। फर्स्ट हाफ में द मैगपाइज 1-0 से आगे थे, फिर सेकंड हाफ में कोडिगाक्पो ने इक्वलाइज किया, पर तुरंत विलॉक ने न्यूकासल यूनाइटेड को आगे भेजा। फिर जो होना था वही हुआ, नए खिलाड़ी म्यूनोस पर पेनाल्टी और ज़ोबोस्लाई का गोल, हिसाब बराबर। एंटोनी इराओला का पहला प्रीमियर लीग मैच लिवरपूल के साथ और पहली कमाई, पहला अंक। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिला, हार से बचने का हल मिल पाया लिवरपूल को। एस्टन विला के लिए दर्दनाक शुरुआत, 4-0 से ब्राइटन ने एस्टन विला को चकनाचूर किया। लिंडेलोफ का ओन गोल, हिशलवुड का डबल ब्राइटन के लिए, इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती थी। ब्राइटन लीग में टॉप हैं। मैनचेस्टर सिटी के लिए कमबैक विन, बोर्नमुथ के खिलाफ 84वें मिनट तक सिटी 1-0 से हार रही थी, पर जाकर मार्गवे और वाजोल मसीहा बने दोनों गोल चर्की के पास पर। बोर्नमुथ का गोल तावेनी ने स्कोर किया। सो वी कैन रैप अप, आर्सेनल की जीत, मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटनहम हॉटस्पर की हार, लिवरपूल का ड्रॉ मैच और ब्राइटन बना लीडर। आज लंदन डर्बी, फुलहम वर्सेस चेल्सी। एस्टन विला की टीम में ओली वाटकिंस नहीं था, शायद वो जाने वाला है, कोच एमेरी ने बताया। प्रश्न वाटकिंस से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है। खबर है अल हिलाल उसे साइन करने वाला है। इंग्लैंड से दूर टर्की में मोहम्मद साला ने अपने नए क्लब ट्राबज़ोंस्पोर के लिए 2 गोल स्कोर किया। उसकी टीम ने इस्तांबुल बसाकशहीर को 2-1 से हराया। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में वेस्ट ब्रोमविच अल्बियन ने बर्नले को 3-1 से जलाया। इधर स्पेन के ला लीगा में बमबारी बार्सिलोना की ओर से 5-0 से एल्चे को पछाड़ा। राफीना का डबल, लोपेज का डबल, अदयेमी का एक गोल। एथलेटिको मैड्रिड का ड्रॉ मैच 2-2 विलारियल के खिलाफ। रिताफे ने रेसिंग सेंटांडर

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: देखो भाई, हम जब बात करते हैं, हो सकता है बहुत से सारे लोग हैं जो इसको सीरियसली नहीं लेते।

0: को 1-0 से हराया। इटली की सेरी आ में टोरिनो 1 एसी मिलान 2, अटलांटा 2 सासुलो 1, वेनेजिया 0 लेचे 2, फ्रोजिनोने 0 यूवेंटुस 1। फ्रांस के लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मे के लिए पहले मैच में ही फेरान टोरेस का डबल, पर पेरिस सेंट जर्मे ने मैच ड्रॉ किया 2-2 रेन के खिलाफ। अंजे 0 लील 2, ले हावर 0 मोनाको 1। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में डच ग्रैंड प्री में लैंडो नॉरिस की जीत हुई, ये उसकी लगातार दूसरी जीत है। क्रिकेट में श्रीलंका वर्सेस इंडिया दूसरा टेस्ट मैच का पहला दिन, भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही है, पहले दिन 300 रन बना चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर। देवदत्त पडिक्कल 117 रन बनाकर आउट हुआ, शुभमन गिल भी हाफ सेंचुरी पूरा कर पाया। लोकल स्पोर्ट्स की बात करें, घुड़दौर में कल ट्रिपल क्राउन कुंभरे वियरा के नाम, फुकुना स्टेबल का चैंपियन कुंभरे वियरा अभी तक अपराजित है। ग्रुप 1 बोरुशस डर्बी में उसकी जीत हुई। शॉ डिमास में एक के बाद एक कॉन्सेक्यूटिव 9th विन। कल की रेस मीटिंग की शुरुआत गजादर स्टेबल से हुई, रिवर हॉक ने किया, और समापन भी गजादर स्टेबल के साथ पेव्ड विव गोल्ड। रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में कल स्काईलॉक और सिलेक्शन कोतेज के बीच मैच ड्रॉ, 1-1 पेनाल्टी पर स्काईलॉक गुडलैंड्स क्वालिफाई। और शुरू में कहा था, फिर से कहेंगे, कहना बनता है किम्बर्ली लेकू दे बियो पेना साइकिलिंग की हमारी महारानी, अद्भुत लाजवाब ऐतिहासिक परफॉर्मेंस, ब्रिटेन 2 जीतना वर्ल्ड क्लास है, बधाई हो, ब्रावो किम्बर्ली। हैव अ नाइस टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती एंड हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। टेक केयर, बाय बाय।
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट Radio Mastie.

0: c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है वो बच्चों के लिए होगा। बच्चों को सिखाना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए बहुत ज़रूरी होता है। झूठ चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो ट्रस्ट को धीरे धीरे कमज़ोर करता है। सच कभी कभी कड़वा लगने लगता है, लेकिन वही रिलेशनशिप कैरेक्टर और सेल्फ रिस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, झूठ जो है वो ट्रस्ट जो है तोड़ देता है। एक बार किसी को पता चल जाए कि हमने झूठ बोला, तो उन्हें फ्यूचर में हमारी सच्ची बात पर भी डाउट होने लगता है। सच बोलना हमेशा इजी नहीं होता, कभी पनिशमेंट का फियर भी होता है, कभी किसी को हर्ट करने का, लेकिन सच बोलने की हैबिट कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। छोटा सा झूठ कभी कभी बड़ा प्रॉब्लम बना देता है, क्योंकि उससे बचने के लिए हम नई नई एक्सक्यूजेज और स्टोरीज बनाने पड़ते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो हमें याद नहीं रखना पड़ता कि किस इंसान को क्या स्टोरी बताई थी, दिल और दिमाग दोनों हल्का रहता है। और झूठ जो होता है कभी कभी रिश्ते तोड़ देता है, कभी कभी सपने तोड़ देता है, कभी कभी इंसान को भी तोड़ देता है। सच बोलना सिर्फ दूसरों के साथ ईमानदारी नहीं, खुद के कैरेक्टर के साथ भी ईमानदारी बनना होता है। तो चलिए, इसी के साथ आप भी सोच लीजिए कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो, कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच का साथ देना।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए जी, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको हमारी तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड नेक्स्ट गाना जो होगा हम किसके नाम डेडिकेट करते हैं. नमस्कार जी, यहाँ पर गाना होगा फॉर ब्रदर दिवेश टोरल, उनके डैड संदेश की तरफ से, मम्मी कल्याणी, सिस्टर लिशिता की तरफ से जो है फ्रॉम लियो शित्याहूज, तो उनको हम बहुत बहुत सारा प्यार भेजते हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू सो मच. चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक और बर्थडे है, और ये बर्थडे है पापा ज्ञानदेव का, सो यहाँ पर उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रही हैं सुजाता, जेशना, हर्षित, आशना और उनके दामाद केविन और उनके निफ्यू की तरफ से भी उनको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा प्यार एंड विशिंग हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. तो चलिए, जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको बहुत सारा प्यार है एंड हमारी पूरी रेडियो मस्ती टीम की तरफ से विशिंग यू अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट बर्थडे. गीतों के इस खूबसूरत सफर में आगे बढ़ते हैं एंड आई जस्ट होप आज मंडे को आपकी जो मॉर्निंग है एकदम जबरदस्त हो गई होगी और हमारे साथ हमारे गाने जो हैं आपके लाइफ में थोड़ा सा असर दिखा रहे हैं. जानते हो मॉर्निंग मॉर्निंग में काफी सारे लोग हैं जो थोड़े मुड़ी मुड़ी रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स करें, थोड़ा ब्रीद इन थोड़ा ब्रीद आउट एंड अपने आप से बोल दीजिए, फिर क्या सबको पता चल जाएगा कि आज आपका मूड एकदम झकास है, क्योंकि यू आर लिसनिंग टू मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती.

Oh, cara, cara, cara, cara, cara. भाई हमारे भी काला चश्मा पहनने का टाइम आ गया है और आपको बाय बाय कहने का टाइम आ गया है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर ऑन रेडियो मस्ती फॉर मॉर्निंग बीट. आपसे कल सुबह 7 बजे मिलेंगे. बाय बाय, टेक केयर. RM2 Radio Musty. Feel the Musty.

0: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: घड़ी मिलाते चलिए, इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता। नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आपसे लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम देश के बारे में बात करती हैं। स्कूलों में नया शैक्षणिक सप्ताह शुरू हुए एक सप्ताह हो गया है, लेकिन ग्रेड 11 के छात्रों के लिए ऐसी परीक्षाओं से पहले होने वाली तैयारियों के बीच मॉक परीक्षाओं के नतीजे चिंता बढ़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ों के मुताबिक 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा, जबकि गणित में केवल 37% छात्र ही पास हुए। स्थानीय गवर्नमेंट स्कूल का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें लोग प्यार से जयन के नाम से भी जानते थे। स्थानीय के इस बेटे और एमएमएम के प्रमुख नेताओं में शुमार जयन कतारी ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर विदेश व्यापार में जुड़ी वार्ताओं में अपनी पहचान बनाई थी। अब बात एक दुखद घटना के बारे में करते हैं। अगोशवा में 7 महीने के बच्चे की कथित हत्या का मामला सामने आया है। गोशबा में इसमें 7 महीने के बच्चे की कथित हत्या के इस मामले में बताया गया है कि बच्चे के 30 वर्षीय पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस के अनुसार 7 महीने का बच्चा जो आगियानो के लियानो पेहिन अपने कमरे में सो रहा था, जब उसकी माँ के साथ ही 30 वर्षीय जो डैनियल पेहिन घर में आए। कुछ देर बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इसके बाद माँ बच्चे को देखने कमरे में गई, लेकिन बच्चा वहां नहीं था। काफी तलाश करने के बाद उन्हें कपड़ों के ढेर के बीच एक चादर गांठ लगी हुई मिली। चादर खोलने पर बच्चा उसके अंदर खून से लथपथ हालत में मिला। वह सांस नहीं ले रहा था और उसकी दाहिनी जांग पर कट का निशान भी दिखाई दिया। घबराई हुई माँ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें पूरा संदेह है कि उनके साथी जॉन डैनियल पेहिन ने उनके बच्चे की हत्या की है। मौके पर पहुंचे पुलिस डॉक्टर ने बच्चे की मौत की पुष्टि की। मामले की पुलिस जांच कर रही है। और स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून महीने के बीच मॉरिशस के किसानों ने अपनी उपज औसत पहले की तुलना में कम कीमत पर बेची है। सब्जियों के दामों में गिरावट खास तौर पर तेज रही, जिसमें गाजर के उत्पादकों को मिलने वाली कीमत में 54% से अधिक की भारी कमी दर्ज की गई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार या सुपरमार्केट में उपभोक्ताओं को भी सब्जियाँ सस्ती मिली। और आज सोमवार दोपहर 12 बजे से कैसिनो दे मोरिस के कर्मचारी और उनके यूनियन प्रतिनिधि राष्ट्रसभा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। करीब 600 कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि कैसिनो की संभावित टेक ओवर के लिए टेंडर प्रक्रिया के बाद से उन्हें अब तक आगे की प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। और सरकार डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया को तेज कर रही है और सरकारी पोर्टल तथा विभिन्न सरकारी वेबसाइट को एक ही स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलने की तैयारी है। 21 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस पहल पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक आधुनिक, एकीकृत और नागरिक केंद्रित बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस में 19 जून से अब तक डूबने की घटनाओं में 301 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की एक मंत्री ने बताया कि पहले साल की तुलना में मौतों में हुई इस तेज बढ़ोतरी का संबंध लंबे समय से जारी हीट वेव से है। फ्रांस के खेल और युवा मंत्री मारीना फेरारी ने बताया कि मौतों का ये आंकड़ा 2025 की तुलना में 14% अधिक है और इससे उन्होंने एक दुखद आंकड़ा बताया है। फ्रांस, स्पेन और इटली इन दिनों भीषण गर्मी की लहरों की चपेट में है। इन गर्मी की लहरों के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगी है, जिससे हजारों

हेक्टेयर जमीन जल चुकी है। कई जानलेवा हादसे ऐसी जगहों पर हुई है जहां तैराकी के लिए अनुमति नहीं है या जहां निगरानी की व्यवस्था भी नहीं है। और अंत में हम आपको याद दिला देते हैं कि इस बुलेटिन के तुरंत बाद आज की चर्चा कार्यक्रम आप अधिक और सुन पाएंगे। और आज के लिए विषय है घरेलू बागवानी यानी कि हाउस होल्ड गार्डनिंग। और आज के लिए मुख्य मेहमान हैं सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर संजय सेम्बू और प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे नीतू शाह। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, आप सभी को नमस्कार।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Alright guys, सुबह के 9:15 हुए हैं. होप यू डूइंग गुड एंड इन गुड मूड. चलिए तो यहाँ पर मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और खूबसूरत गीतों के साथ यहाँ पर आप भी जुड़ चुके हैं. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. डोंट फॉरगेट यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5499124 जहाँ पर भी हैं, घर पे हैं. स्पेशली हमारी जो लेडीज हैं, इस टाइम पे आप लोग घर पे होते हैं, हमेशा कहते हैं कि चाय पीने का टाइम नहीं मिलता, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिलता. अरे घर पे तो कोई नहीं है, फिर रोकता कौन है? सोचने वाली बात है. रोकने वाला कोई नहीं होता, रोकने वाले आप होते हैं क्योंकि आपको काम पूरा करने की जल्दी होती है. लेकिन लाइफ में कभी कभी ठहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रुक जाना इंपॉर्टेंट होता है और अपने बारे में सोचना जरा इंपॉर्टेंट होता है ना लेडीज. तो चलिए इसी के साथ आप बैठ जाइए अपने चाय वाय नाश्ते के साथ, हमारे गीतों को एंजॉय करें और जिनका ब्रेकफास्ट हो गया वो हमारे साथ थोड़ा डांस कर ले.

चलिए हमारा अगला गाना हम दाफिसन के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो साथ दे रहे हैं, और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा ये हम चला रहे हैं उनके लिए जो अभी इस समय हमारे साथ हैं। और भाई प्यार से हमारे गीतों को एंजॉय करने के लिए थैंक यू सो मच प्रतिमा जी, कैसी हैं आप? चलिए यहाँ गाना आपके लिए, आपके बेटे सुनील और साथ में आपके पति सुनील, एक्चुअली सॉरी आपके पति सुनील, आपके बेटे अरवेश के लिए और साथ में आपकी पूरी फैमिली के नाम।

0: तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या हम है जिसको छुपा रहे हो भाई हम ये तो नहीं चाहते कि अपने गमों को छुपाएं हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें आपके अपने
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
0: जी हाँ रेडियो मस्ती रेडियो ही ऐसा है जहाँ पर हम चाहते हैं कि आप लोग अपने दिल में छुपे जो भी बात है हम तक ज़रूर पहुँचाए चाहे आज आप उदास हैं चाहे आप खुश हैं चाहे आप कोई कन्फ्यूजन में हैं चाहे आपको किसी से कोई बात करनी है चाहे आपको ये लगता है कि भाई हमें बस गाना जो है सुनना है तो चलो आशा जानू यहाँ कॉटेज से है गाना हो जाएगा उनकी मामा कुमारी उनकी सभी फैमिली जानू फैमिली के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप भी किसी को गाना डेडिकेट करना चाहते हैं सो यू आर मोस्ट वेलकम जी हाँ 5491294 हमारा नंबर है चलिए इसी के साथ कभी कभी इंसान अकेला फील करता है उसको पता नहीं चलता कि भाई किसी से बात करनी है किसी से दिल की बात शेयर करनी है हम हैं ना आपके साथ इसीलिए तो कहते हैं 5491294 नंबर है हमारा चाहे तो मैसेज कर लो

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: तो जितने भी लेडीज इस समय हमें सुन रहे हैं, चलिए बात करते हैं हम अब आपके हेल्थ के बारे में। जी हाँ, एक टाइम आता है कि हमारे जो बाल हैं वो गिरने लगते हैं, हमारा जो स्किन है लूज़ होने लगता है और पिंपल्स आने लगते हैं, हमारा स्किन जो है बहुत बहुत ज़्यादा उसमें फाइन लाइंस आने लगते हैं। तो ये क्या होता है कि हम लोग जब पानी नहीं पीते हैं ना, अपने स्किन को हाइड्रेट नहीं करते हैं, तो हमारा जो स्किन है वो बिना हाइड्रेशन की ऐसे उस पर रिंकल्स आ जाते हैं। तो पानी पीना ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ अभी विंटर चल रहा है तो स्किन को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई जस्ट होप कि आप लोग नहाने के बाद दो ड्रॉप्स ऑयल लेकर, यू नो, शावर करने के बाद जब आपने अपने स्किन को ड्राई कर लिया तो तभी तुरंत दो ड्रॉप आप उसको अपने बाथरूम में रखिए। बेबी ऑयल होता है, दो ड्रॉप लीजिए, हाथों में डालिए और फिर उसके बाद चेहरे पे, हाथों पे, पैरों में, पूरी बॉडी में उसको लगा लीजिए। ये क्या करते हैं, आपकी स्किन से ये लॉक करता है मॉइस्चर को। फिर क्या होता है कि आपका जो स्किन है वो डल नहीं दिखता, फिर उसके साथ साथ आपका स्किन जो है मॉइस्चराइज रहता है और इस ठंड से भी आपको बचाता है। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि आपको करना क्या है। चलिए इसी के साथ खूबसूरत गीतों का सफ़र जारी रखते हैं आपके ही रेडियो मस्ती पर। डोंट फॉरगेट, यू कैन सेंड इन योर मैसेजेस ऑन 5499 1294। साथ देते रहिए हमारा।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: All right, guys, and now it's time to break the ice. सभी बात करनी बहुत ज़रूरी हो गई हैं. कुछ लोग दिल की बातें दिल में ही रखते हैं, ज़बान पे नहीं लाते हैं. अच्छी बातें नहीं होती हैं जब आप बोलते नहीं हैं, जब आप शेयर नहीं करते हैं. कभी कभी ये नहीं कह रही कि सबके साथ शेयर करो, लेकिन हो सकता है कि आपकी फ्रेंड सर्कल्स में कोई ऐसा इंसान हो जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं. बातें करना कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है.

है या कम्युनिकेशन जरूरी है। चलिए जी यहाँ पर नेक्स्ट होगा यहाँ बिकॉज किसी ने कहा दीदी अनीता है, दीदी अनीता विमल और ये है सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा, कहते हैं कि अभी हम वेजिटेबल्स ओके प्लांटेशन चल रहा है क्या? तो कहते हैं कि हमारा रेडियो तो हमेशा हमारे साथ होता है और हम जहाँ भी होते हैं खेती करते हैं फिर भी रेडियो सुनते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। चलिए भाई गाना गाते गाते हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है ना जी? आप वहाँ पे, हम यहाँ पे रेडियो मस्ती सुन रहे हैं आप लोग। ये हैं अब्दुल्ला सहरा वालू, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे यू टू। और यहाँ पे हमारे साथ है तैयब जो गाने हमारे गुनगुना रहे हैं, थैंक यू। एक और मैसेज आया है, नेक्स्ट गाना फॉर मम आशा पापा संदीरन श्री निशा अक्षय त्यांशा देवी राजन माला सादा और रेशमा के लिए। ओके तो ये सारे लोग हैं हमें सुन रहे हैं। बेटी लविशा तंतुनी का बर्थडे है एंड यहाँ पर उनको हैप्पी बर्थडे सेंट जूलियन से, उनके पूरी फैमिली ने उनको विश किया है। और चलिए इसी के साथ हमारा जो प्रोग्राम का अगला गाना है उनके नाम डेडिकेट करते हैं।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: You're listening to Radio Musti. चलिए विदित आपके साथ हैं और यहाँ पर अगले गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं 10 बजे के समाचारों की ओर. मिलते हैं आपसे बस थोड़ी ही देर में कुछ और गीतों के साथ, कुछ और मस्ती करने के लिए और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्यार बिखेरने के लिए. कोशिश तो हमारी ये रहती है कि आप स्माइल करें, खुश रहें. और ज़िंदगी में हमें बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं, हर चीज़ का हम कंप्लेंट करते हैं, लेकिन ग्रेटफुल कभी नहीं होते हैं. जो थोड़ी सी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो दो चीज़ हमें नहीं मिलती उसके लिए हम कंप्लेंट करते हैं, और जो चार चीज़ें हमारे पास है उसको तो हम भूल ही जाते हैं. तो चलिए कंप्लेन करना हम बंद करेंगे. लाइफ में हम आगे बढ़ेंगे खुशियों के साथ, मुस्कुराते हुए. आपके मैसेजेस ऑन 5491294. समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, तो भूलिएगा नहीं कि हम लोग आपके साथ हैं. एंड अगला

गाना कौन सा होगा अभी आप सोच रही हैं, मैं भी यही सोच रही थी कि अगला गाना आपको मैं कौन सा सुनाऊं जिसे सुनकर आपका जो दिल है वो गार्डन गार्डन हो जाए। तो चलिए आपके दिल को गार्डन करने की कोशिश में हम ले आए हैं आपके लिए एक खूबसूरत सा गीत, प्यार के साथ आपको डेडिकेट करते हैं। और चलिए इसी के साथ हम बढ़ते भी हैं समाचारों की ओर, मिलते हैं उस पार और करते हैं थोड़ी मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: घड़ी मिलाते चलिए, दिन के 10 बजे हैं। देश विदेश के समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अशिता रघु। चलिए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार अशिता।
7: नमस्कार विदिता, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोग

स्वागत है। आज 24 अगस्त 2026 को जैसे कि आप जानती हैं छात्रों की कक्षाओं में लौटे एक सप्ताह हो गया है। वे अब शैक्षणिक वर्ष के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ छात्रों के लिए ये समय दूसरों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें ग्रेड 11 के छात्रों के छात्र भी शामिल हैं जिन्हें कुछ ही हफ्तों में SC की परीक्षाओं का सामना करना है। हालांकि दूसरे तिमाही में आयोजित मौक परीक्षाओं के नतीजे उत्साहजनक नहीं है। शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ों के अनुसार 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा है। और अगर बात गणित यानी मैथमेटिक्स की करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले केवल 37% छात्र ही इस विषय की परीक्षा में सफल हुए हैं। इन आंकड़ों ने शिक्षा मंत्री की चिंताएं बढ़ा दी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस के किसानों ने कुल मिलाकर अपनी कृषि उपज पहले की तुलना में कम कीमत पर बेची है। और अगर हम ज़्यादा विस्तार से बात करें तो इसका सीधा मतलब है कि वे कीमत जो किसान अपनी उपज बेचते समय हासिल करता है इससे पहले कि वह उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचे। अप्रैल से जून के बीच इन कृषि उत्पादों के दाम में औसतन 2.6% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि साल के पहले 3 महीनों की तुलना में सब्जियों के मामले में ये रुझान और भी स्पष्ट रहा। पहली तिमाही में सब्जियों के दाम में करीब 2.2% की गिरावट आई थी, वहीं दूसरी तिमाही में ये गिरावट बढ़कर 8.9% हो गई। सबसे बड़ी गिरावट गाजर के मामले में दर्ज की गई, जिसकी उत्पादक कीमत में 54.6% की भारी कमी आई। वहीं साल की शुरुआत में कीमत बढ़ने के बाद अनानास के दाम ने भी रुख बदला और इसकी उत्पादन कीमत में 20.4% की गिरावट दर्ज की गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके विपरीत कुछ पशुपालन उत्पादों के लिए किसानों को अधिक कीमत मिली। अंडे और पशुधन की कीमत में 6%, जबकि दूध की कीमत में 8.6% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन किसान को मिलने वाली कीमत में ये गिरावट जरूरी नहीं कि आपकी खरीदारी के बिल में भी उसी अनुपात में दिखाई दे। आज सोमवार दोपहर 12 बजे से कासिनो दे मोरिस के कुछ कर्मचारी और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन सदस्य राष्ट्रीय सभा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इन कर्मचारियों के सामने उनके पेशेवर भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। दरअसल कुछ हफ्ते पहले कासिनो प्रतिष्ठानों में लगाए गए एक नोटिस में संभावित रूप से कासिनो के संचालन को किसी अन्य पक्ष को सौंपने के लिए टेंडर जारी किए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके लिए ऑफर जमा करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त की गई थी, लेकिन इसके बाद से कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अब तक इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्थिति को लेकर कासिनो दे मोरिस के करीब 600 कर्मचारी चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नम अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने में मदद के लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री बर्नम अपने पूर्वाधिकारी सक स्टामा के कार्यकाल में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा गठित कोलिशन ऑफ द विलिंग की पहली बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वे यूक्रेन के समर्थन में ब्रिटेन की भूमिका के लिए ब्रिटिश जनता की ओर से एक सम्मान भी स्वीकार करेंगे और यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यूक्रेन के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम के तहत बर्नम की सरकार रक्षा कंपनी MBDA को लंबी दूरी यानी लॉन्ग रेंज स्कार्प मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले ब्रिटिश घटकों से संबंधित गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करने की अनुमति देगी। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद। साथ रहिए, सुन पाएंगे एक शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रायरोड लालोगा सैपिया में 48 साल के 48 ईयर्स ओल्ड के श्री अमिताभ दुर्जन जिन्हें माचिंगो के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर लालोगा सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: Welcome to RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: दिन के 10:08, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया होगा, गाने को सुनकर थोड़ा सा मन टटोल लिया होगा और फिर दिल के किसी कोने से कहीं से कोई आवाज आई होगी। कोई बात नहीं, वो आवाज आप हम तक पहुंचा सकते हैं 5491294।

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Shan live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
3: RM2
0: Radio Musti.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2.
1: Musty Mornings, Radio Musty.
2: Yes, चलिए अब आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके टिप्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा जो विंटर है वो बाकी देशों के विंटर के इतने नहीं है, क्योंकि बाकी देशों में जब विंटर होता है तो उसको विंटर कहते हैं क्योंकि वो विंटर होता है। हमारे यहाँ जो विंटर होता है उसमें दिन में समर होता है और फिर रात में विंटर होता है, यानी कि मॉर्निंग में हमें ठंडा ठंडा फील होता है, रात में फील होता है, दिन में ऐसी कड़क धूप होती है हम पूछते हैं कि हमारा दूसरा जन्म तो नहीं हो गया, कहीं हम पिछले जन्म में तो नहीं गए, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन हाँ, अभी हम जैसे जानते हैं कि विंटर जो है वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको रात में और सुबह में थोड़ी ठंड फील होती है, राइट। लेकिन दिन में गर्मी होती है, इसीलिए जब आप सुबह निकलते हैं काम पे तो मेक श्योर कि आप अंदर कुछ ऐसे इनर वगैरह पहन रहे हैं, कुछ लाइट कपड़े पहन रहे हैं। हाँ, आपके जो कोट वगैरह हैं आप उसको ले जा सकते हैं, ब्लेजर्स वगैरह जो हैं वो डाल सकते हैं, थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है। और फिर उसके बाद दिन में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं या ऑफिस से निकल कर बाहर कहीं जा रहे हैं, तो आपको पता है आपको गर्मी लगेगी, तो आप अपने ब्लेजर के निकाल सकते हैं और साथ में अपने कोट को भी निकाल सकते हैं, एंड साथ में आपको लाइट भी फील होगा कि बाहर अगर गर्मी है तो कॉटन के कपड़े भी आप पहनना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऊपर में डोंट फॉरगेट कि आप अपने ब्लेजर्स या तो फिर आप अपना कोट भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने वूलन का कुछ पहन लिया और बाहर निकली तो इतनी गर्मी है, लोग कहेंगे कि इसका दिमाग तो ठीक नहीं है, हैं ऐसे गर्म गर्म कपड़े पहन के ये धूप में कहाँ जा रही है। स्पेशली पोर्टलिस में आपको पोर्टलिस की गर्मी तो पता ही है, तो आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। और इसी के साथ मैं कहूँगी कि मेक श्योर कि आप अपने ब्लेजर्स रखें, लेकिन अंदर में आप चाहे तो स्लीवलेस या तो फिर कोई लाइट चीज़ पहन सकते हैं, जिसके चलते आप जब अपने कोट निकालें तो आप सुबह में और शाम में भी थोड़ी सर्दी शुरू हो जाती है तो वापस अपना ब्लेजर या कोट पहन सकते हैं, जबकि दिन में यू विल फील एट ईज।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरि फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: RM2
3: Radio Musty.
1: Feel the musty.

0: FM2
1: Radio Musty.
2: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo le plein de produits, morbe à portière 25 roupies, granit à portière 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, vine découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.
3: À l'occasion fête Raki, ban magasin Best Factory Shop, il met une grande promotion allant jusqu'à 50% discount. Oui, vous bien attendez, jusqu'à 50% off le tout ban vêtements pour hommes, dames et enfants. Alors, pas attendez, vinasti au cas de Raki dans ban magasin Best Factory Shop. Route Bassin, Carbone, La Sousse, Flac, vis-à-vis Winners, Piolet, Floréal, vis-à-vis Feeling Engine. Téléphone le 59 25 10 90 pour tout renseignement. Merci.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
4: चलिए भाई आपके लिए गेम लेकर आए हैं एंड द गेम इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय बर्जेलो योर फ्रेग्रेंस स्पेशलिस्ट बर्जेलो इज एट विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल पोर्ट लुइस बर्जेलो द सेंट ऑफ क्वालिटी फॉर इंक्वायरीज यू कैन कॉल ऑन 2146811525118 आपको मिल सकता है वाउचर वर्थ 500 रुपीज यू हैव टू टेल मी वेयर इज द बर्जेलो स्टोर लोकेटेड इन मॉरिशस वेयर इज द बर्जेलो स्टोर लोकेटेड इन मॉरिशस इज इट बी बागाटेल मॉल और बी फिनिक्स मॉल और सी विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल पोर्ट लुइस आपके जवाब ऑन 549 and 129 9-4.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: तो चलिए जी, यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था और आपने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है. वर इज अ बाजलो स्टोर लोकेटेड इन मॉरिशस, इट्स सी विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल पोर्ट्रीज. सही जवाब देकर विनर बने हैं बच्चन ओखेल फ्रॉम रमसान. कॉन्ग्रेचुलेशन. सही जवाब देने के लिए आपको मिल रहा है एक वाउचर और ये वाउचर आपको दिया जा रहा है बाजलो की तरफ से, योर फ्रेग्रेंस स्पेशलिस्ट.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हैं और चलिए यहाँ पर समय हो गया है। अब आपको ये भी बता दें कि जो लोग खाना खाने जाते हैं, जाहिर सी बात है वो खाना खाने से पहले या पानी पी लेते हैं और खाना खाने के बाद भी पानी पीते हैं। मेक श्योर कि आप ये थोड़ा सा अपना जो पानी पीने का आपका जो पैटर्न है इसको थोड़ा सा चेंज करें। खाना खाने से 30 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 30 मिनट बाद आप पानी पीजिएगा। खाना खाने से पहले आप फुल हो जाओगे, फिर उसके बाद खाना खाओगे, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद जब बीच बीच में भी आप पानी पीते हैं तब भी ऐसा होते कहते हैं कि हमेशा जब खाना खा रहे हो तो उसके 30 मिनट बाद ही आप पानी पीना। चलिए इसके साथ भी हमारा दिल कुछ कह रहा है, आपका दिल भी शायद कुछ कहना चाहता हो, तो ऐसे में आप अपने मैसेज भेजेगा हम तक ऑन 5491294। यू आर लिस्निंग टू रेडियो मस्ती मॉर्निंग मस्ती आपके साथ, मैं हूं वेदिता। इस गाने के साथ बढ़ते हैं हम 11 बजे के समय।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: घड़ी मिलाते चलिए दिन के 11 बजे हैं. एक बार फिर मिलते हैं आशिता रघु से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. नमस्कार आशिता.
4: नमस्कार विद्या, श्रोताओं को भी नमस्कार. सरकार अपने डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर रही है. शुक्रवार 21 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में एक ऐसी पहल पर चर्चा की गई जिसका उद्देश्य सरकारी पोर्टल और सरकार की विभिन्न वेबसाइटों को आधुनिक बनाकर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलना है. ये प्लेटफॉर्म स्मार्ट, एकीकृत और नागरिकों की जरूरतों पर अधिक केंद्रित होगा. स्थानीय गवर्नमेंट स्कूल का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कतारी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें लोग जैन के नाम से जानते थे. स्थानीय में जन्मे और एमएमएम के प्रमुख नेताओं में शुमार जैन कतारी ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी. इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई. खासकर विदेश व्यापार से जुड़ी वार्ताओं में उनकी अहम भूमिका रही. उनके परिवार के लिए ये फैसला भावुक करने

0: वाला होने के साथ साथ गर्व का विषय भी है। जैन कतरी का नाम किसी स्कूल से जुड़ना उनके लिए उनकी यादों को जीवित रखने का एक माध्यम है। आज सोमवार दोपहर 12 बजे से कैसिनो दे मोरिस के कुछ कर्मचारी और उनका प्रतिनिधित्व करने वाला यूनियन सदस्य राष्ट्रसभा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इन कर्मचारियों के सामने उनके पेशेवर भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले कैसिनो प्रतिष्ठानों में लगाए गए एक नोटिस में संभावित रूप से कैसिनो के संचालन को किसी अन्य पक्ष को सौंपने के लिए टेंडर जारी किए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके लिए ऑफर जमा करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त तय की गई थी, लेकिन इसके बाद से कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अब तक इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्थिति को लेकर कैसिनो दे मोरिस के करीब 600 कर्मचारी चिंतित हैं। और कैसिनो एम्प्लॉयज यूनियन के नेगोशिएटर अश्विन गुदे के अनुसार कर्मचारी इस प्रदर्शन के जरिए अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध के दौरान चुनाव कराना देश के लिए विनाशकारी साबित होगा और ये एक सुनामी की तरह यूक्रेन को तबाह कर सकता है। कीव में इस गर्मी से राजनीतिक संकट गहराया हुआ है, जिसकी शुरुआत लोकप्रिय रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को पद से हटाए जाने के बाद हुई और कुछ दिनों बाद उन्होंने चुनाव कराने की मांग भी की। और उधर गिरी की राजधानी कोनाक्री में एक बड़े कचरा स्थल पर कचरे का पहाड़ ढहकर आसपास के घरों पर गिर गया, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने बताया कि हादसे में 22 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 की हालत गंभीर है। ये हादसा दार-ए-सलाम इलाके में स्थानीय समयानुसार रात करीब 2 बजे हुआ। रात भर हुई भारी बारिश के बाद कचरे का ढेर ढह गया। सरकार के मुताबिक मलबे में जीवित बच्चे लोगों की तलाश के लिए सेना समेत बड़ी संख्या में बचावकर्मी और संसाधन तैनात किए गए हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV.

0: वही दिल तो आपका ही है और इस दिल में बहुत सारा प्यार आपके लिए है और क्या कहूँ मैं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड चलिए ये गाना जो है हम डेडिकेट करते हैं स्वीटी के लिए जो मौका से साथ दे रही है। और स्वीटी जी मैं इसको क्या समझूँ, आपका प्यार शायद जो आपने हम पर बरसाया है, थैंक यू सो मच। अनिता है फ्लिक ऑफ लाख से, उनके लिए भी ये गाना डेडिकेट करते हैं और साथ में ये गाना जाएगा रिश्ते के वनराज के लिए, बहुत बहुत सारा प्यार उनको भेजा है किसी ने। तो चलिए अगला गाना उनके लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी, काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
3: Shan live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists.

0: जादू भरी आंखों वाली सुनो, ये है उदित नारायण, आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा प्यारा सा गाना। चलिए जी, इसी के साथ समय हो गया है कि दशक फिल्म के इस गाने के बाद अब हम कुछ काम की बात कर ले। आप पोटैटो जब बनाते हैं तो आलू क्रिस्प नहीं बनता, बता दूं कैसे बनाना है।
1: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
2: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: आलू की बात चली तो कान ज्यादा लगा दिया पास रेडियो के, जानती हूँ। चलो तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जब आप पोटैटो को फ्राई करते हैं कभी वो क्रिस्पी नहीं बनता और बच्चों को क्रिस्पी पोटैटो ज्यादा अच्छे लगते हैं। देखो अभी मैं क्या करूँगी, आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक बनाती हूँ। आलू को कट करने के बाद उन्हें आप 10 से 15 मिनट ठंडे पानी में सोक करें। जी हाँ, आलू को पहले काट लीजिए फिर उसको ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट के लिए सोक करें, इससे एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है। फिर आलू को अच्छे से ड्राई कर लो, ये ज़रूरी है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ड्राई कर लो। उसके बाद ऑयल प्रॉपरली हॉट होने चाहिए और फिर उसके बाद आलू को फ्राई करो। यानी कि क्रिस्पी आलू का सीक्रेट है पहले पानी में डिप, फिर प्रॉपरली ड्राई और फाइनली हॉट ऑयल में फ्राई। मतलब आलू भी बोलेगा आज तो मैं क्रंची हूँ। तो चलो अब आपको पता चल गया बच्चों के लिए जब आप क्रिस्पी पोटैटो बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलो ये आलू क्रिस्प बना दिया ना, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी क्या करना है। देखो, जब हम डाइटिंग करते हैं तो हमेशा हम यही सोचते हैं कि जब हम डाइटिंग करें तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, जब डाइटिंग करो तो खाना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है। देखो, अभी बच्चों के लिए क्रिस्पी आलू बना दिया, पता चला कि सारे आलू आप खा गए तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप लोग अपने डाइट पर थोड़ा फोकस करें। अगर आप सच में वजन कम करना चाहते हैं ना, तो ये जो आप इतना सारा चावल और इतनी सारी सब्जी खाते हैं, आपको चाहिए कि आप चावल का जो पोषण है, मैं नहीं कहती कि चावल मत खाओ, पोषण आपको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि हमें कैलोरीज चाहिए बर्न करने के लिए जब आप एक्सरसाइज करते हो, लेकिन साथ ही साथ में प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से, लेकिन जिन लोगों का वज़न बहुत बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनको मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा राइस जो है कट करना चाहिए। आप जो है रोटी ले सकते हैं, गेहूँ की जो रोटी होती है वो ले सकते हैं आप, वो जो मिलेट होता है बाजरे की रोटी उसको भी खा सकते हैं अगर आपको खाना है। और साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप लोग ना 6 बजे अगर आप डिनर कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, 6 बजे डिनर कर लीजिए और फिर मॉर्निंग में आपको जितना खाना है उतना खाइए, फिर आपका पेट भरा रहेगा। तो इस तरह से आपको डाइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेक श्योर कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इसको आप ज़रा दूर रखें तो और भी अच्छा रहेगा।
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे जो लोग डाइटिंग करने हैं वो पूछते हैं कि दिल तो दिल है, पूछिए हमको क्या चाहिए, और जवाब में आता है पिज्ज़ा चाहिए, चिकन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चिकन भी खाओ, लेकिन उसको बनाने का तरीका अलग होना चाहिए। चलिए जी, यहाँ पर एक मैसेज आया है। गुड मॉर्निंग, ये है यलेश फ्रॉम सुरीनाम। गुड मॉर्निंग यलेश।

0: The beautiful voice of Asha Bhosle और इसी के साथ जाने का टाइम हो रहा है अगले गाने के साथ मैं बाय करूंगी आपको और हमारे बाद गिरीश आपने खूबसूरत पुराने गीतों के साथ आ रही आपको एंटरटेन करने के लिए जी हाँ पुराने गाने आप सुनेंगे 12 से लेके 2 बजे तक तो चलिए यहाँ पर हम चलते चलते नेक्स्ट गाना मामा प्रेमा के लिए चलाएंगे विशिंग हर वेरी हैप्पी बर्थडे एंड दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिले ये हैं कीर्ति और आकाश की तरफ से और यहाँ पर हमारे साथ एक और प्यारी सी फ्रेंड है ये है रागिनी गोवर्धन जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चलिए अभी हम अगला गाना सुनते हैं और सुनते सुनते अगले गाने के साथ बढ़ते हैं समाचारों की ओर जो आप सुनेंगे 12 बजे
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती

0: आइए सुनते हैं समाचार अशिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनी शाश्वतों को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। स्कूलों में नया शैक्षणिक सप्ताह शुरू हुए एक सप्ताह हो गया है, लेकिन ग्रेड 11 के छात्रों के लिए एससी परीक्षाओं से पहले होने वाली तैयारियों के बीच मॉक परीक्षाओं के नतीजे चिंताजनक हैं। शिक्षा मंत्रालय की क्वालिटी इंश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिवीजन के आंकड़ों के अनुसार 20 सरकारी कॉलेजों में मॉक परीक्षाओं का कुल सफलता प्रतिशत 50% से भी कम रहा, जबकि गणित में केवल 37% छात्र ही पास हुए। स्थानीय सरकारी पाठशाला का नाम अब दिवंगत जया कृष्णा कताई के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें लोग प्यार से जैन के नाम से जानते थे। स्थानीय के इस बेटे और एमएमएम के प्रमुख नेताओं में शुमार। जैन कताई ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर विदेश व्यापार से जुड़ी वार्ताओं में अपनी पहचान बनाई थी। रोजबा में सात महीने के बच्चे की कथित हत्या का मामला सामने आया है। मामले में बच्चे की 30 वर्षीय

0: पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि जांच जारी है। पता चला है कि उसकी मां के साथी 30 वर्षीय जॉन डैनियल पेरिन घर में आया। कुछ देर बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसके बाद मां बच्चे को देखने कमरे में गई लेकिन बच्चा वहां नहीं था। काफी तलाश करने के बाद उन्हें कपड़ों के ढेर के बीच एक चादर गांठ लगी हुई मिली। चादर खोलने पर बच्चा उसके अंदर खून से लथपथ हालात में मिला। वह सांस नहीं ले रहा था और उसकी दाहिनी जांघ पर कट का निशान भी दिखाई दिया। घबराई हुई मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें पूरा संदेह है कि उनके साथी डैनियल पेरिन ने उनके बच्चे की हत्या की है। हम आपको याद दिला देते हैं कि मौके पर पहुंचे पुलिस डॉक्टर ने बच्चे की मौत की पुष्टि की। मामले की जांच अभी जारी है और आपको ये भी हम याद दिला देते हैं कि इस शिशु का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा और उसके पिता पर कानूनी कार्रवाई चलाई जा रही है। अन्य खबरों में स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस के किसानों ने अपनी उपज औसतन पहले की तुलना में कम कीमत पर बेची। सब्जियों के दामों में गिरावट खास तौर पर तेज रही जिसमें गाजर के उत्पादकों को मिलने वाली कीमत में 54% से अधिक की भारी कमी दर्ज की गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार या सुपर मार्केट में उपभोक्ताओं को भी सब्जियाँ सस्ती मिली है। और चलते चलते हम आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि इस 7 महीने के शिशु के हत्या के मामले में लैंगिक समानता मंत्री आर्यन नवो मारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इस हत्या को बहुत दर्दनाक बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर कानून सख्ती से लागू किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट के पास पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज डूब गया है जहां पर सवार 24 लोगों में से 2 को बचा लिया गया जबकि 22 अन्य की तलाश के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं फ्रांस में 19 जून से अब तक डूबने की घटनाओं में 301 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की एक मंत्री ने बताया कि पिछले साल की तुलना में मौतों में हुई इस तेज बढ़ोतरी का सबसे लंबे समय से जारी हीट वेव से है। फ्रांस के खेल और युवा मंत्री ने बताया कि मौतों का ये आंकड़ा 2025 की तुलना में 14% अधिक है। फ्रांस, स्पेन और इटली इन दिनों भीषण गर्मी की लहरों की चपेट में है। इन गर्मी की लहरों के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगी है जिससे हजारों हेक्टेयर जमीन भी जल चुकी है। कई जानलेवा हादसे ऐसी जगहों पर हुए हैं जहां तैराकी के लिए अनुमति नहीं है या जहां निगरानी की व्यवस्था नहीं है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, सुनते हैं शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। मोसलमान सेनविल रिवियरा डी एंगुएमे लो नंबर 1 मोसलमान सेनविल रिवियरा डी एंगुएमे 75 साल के 75 इयर्स ओल्ड के श्री जगमाया बोगापुताना जिन्हें नायडू के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 3 बजे उनके घर रिवियरा डी एंगुएमे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टूरिया 3 PM रॉय रोड लालोगा सैंपिया में 48 साल के 48 ईयर्स ओल्ड के श्री अमिताभ दर्जन जिन्हें माचिंगो के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर लालोगा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टूरिया 2 PM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musti.

Retro Rhythm. शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लेकिन हम तो जन्म की बात नहीं करेंगे। आज ही मुलाकात फिर से हमने कर दी आप लोगों के साथ आपकी रेट्रो रिदम में। तो चलिए हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, चेक योर टाइम, 12:09 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी और गिनीशा का प्रणाम। स्वागत है सारे म्यूजिक लवर्स का जो पुराने गाने के शौकीन है, आपका बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में रेट्रो रिदम ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। वक्त के मुताबिक अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे लिसनर्स शायद माइट बी हैविंग देयर लंच राइट नाउ, सो वोन अपेटी टू यू माय डियर। आप बस आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए इस खूबसूरत से म्यूजिकल सफर के लिए, हमारा हम सफर बनने के लिए। लेकर आई है कुछ ऐसे गिने चुने नगमे जो सीधे जाकर आपके दिल पर लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड अच्छा रहा होगा, अपनों के साथ आपने अच्छा सा वक्त बिताया होगा। फिलहाल के लिए आज है मंडे, है 24 अगस्त 2024। लेट्स किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीक टुगेदर। जी हाँ, खूबसूरत सा दिन है, मौसम बहुत हसीन है और गाने भी लाजवाब लेकर आए हैं। आपके डेडिकेशन यानी कि दिल की बात 5499912994 पर यू कैन स्टार्ट सेंडिंग मी राइट नाउ राइट अवे।

0: RM2 Radio Musti
1: Retro Rhythm. खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन RM2 रेडियो मसीह, और वाकई हम दिल से चाहते हैं कि आप बस इन खूबसूरत नगमों को सुनते सुनते मुस्कुराएं और अपनी खूबसूरत खूबसूरत यादों को फिर से दोबारा जी सके। बिल्कुल जी, ये खूबसूरत सा गाना स्पेशली हम लेकर आए हैं उन तमाम सुनने वालों के नाम जो बड़े शिद्दत से प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। दैट वॉज मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में लेकर आए थे खैराम बलराम मूवी से लिया गया, जो 1980s में रिलीज़ हुई थी। लड़का पसंद की और लड़की पसंद की, वैसे अगर आपने कर ली है तो आप अपने पसंद को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं मैसेज के जरिए ऑन 5499-1294 पर। और फिलहाल के लिए हैव अ ब्यूटीफुल मैसेज सैरा बानू जी की तरफ से उनके प्यारे मियाँ जी यानी कि उनके हस्बैंड अब्दुल के लिए एक गाने की मांग की है। चलो कोशिश करेंगे टू प्ले दैट थोड़ी देर में आपके लिए। विश्वानी जी, विश्वानी दुमन जो रहती हैं वाकवा में, और अभी बढ़िया बढ़िया गाने आप सुन रहे हैं। एक गीत आपके लिए जरूर कोशिश करेंगे। आपकी बहन इंदिरा, शारदा और सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता के लिए जो बड़े शिद्दत से बड़े प्यार से हमें सुन रहे हैं। और गुड आफ्टरनून है याले शाम फ्रॉम सुरीनाम। यम्मी यम्मी खाना का जो फोटो आपने भेजा है ना, चिपुरी और सेवन करी, मुंह में पानी आ गया, लेकिन कल हमने भी खाया था चिपुरी और सेवन करी, इसलिए कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। आपने इतने प्यार से जो भेजे हैं ये प्यारा सा पिक्चर। सो ये अगला गाना आपके लिए यालेश और आपके पूरे परिवार वालों के लिए। बाबू से माला और सुखराम और रानी फ्रॉम कावलिस ऑफ फैमिली की तरफ से ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच जी, यूं ही साथ देते रहना। ग्रेट ग्रीटिंग्स फ्रॉम नेदरलैंड्स, एंजॉइंग योर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स अगेन। थैंक यू सो मच जी। और आप मिस्टर जिमी जिमी आजा आजा, कैसे हो जिमी, ये अगला गाना आपके लिए भी। हंसता हुआ इंसान जब खामोश होता है उसके दर्द का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं होता है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। आकाश चेतन मानसुक फ्रॉम बॉम्बू विशिंग एवरीवन गुड आफ्टरनून। अगला गाना स्पेशली मानसुक परिवार के लिए। और हम बिल्कुल मानते हैं बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने हंसी के पीछे अपने दुख छुपा लेते हैं, अपना दर्द छुपा लेते हैं, लेकिन हम तो आपका दुख दूर भगाने आए हैं खूबसूरत गानों के जरिए। एंड चलिए जी, द नेक्स्ट वन आई जस्ट वांट टू डेडिकेट इट स्पेशली टू ऑल दोज जो बड़े प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती 5499-1294 पर। सेंड मी योर डेडिकेशंस।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।

0: दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।

थैंक यू सो मच अजी साथ देने के लिए ऑन आवर वन टू रेडियो मस्ती मैं हूं गिनिशा जो साथ दे रही हूं इस खूबसूरत सी सफर में एंड दैट्स योर रेट्रो रिदम थैंक यू जी ये है स्पेशली किशोर दा की आवाज में खासकर आपके लिए जब चाहा यारा तुम्हें जी हां दोस्त ये जो गाना है स्पेशली टू ऑल दोस्त हु आर एट वर्क राइट नाउ सो कोशिश कीजिए

0: Retro Rhythm. तो चलिए जी, टाइम तो बीटा चला जा रहा है, 12:50 हो चुके हैं। आई रियली होप दैट एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन जो लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए ऑन ऑनलाइन टू रेडियो मसी। और फिलहाल के लिए चलिए जी ऑन 5499-1294 पर लेट्स चेक इट आउट योर डेडिकेशंस जो बड़े प्यार से आपने लिख के हमें भेजे हैं। एंड वी डू हैव द नेक्स्ट वन, किसी ने बोला नाइस थिंग एट द डे विद योर प्रोग्राम, अच्छा लगता है ना, दिन जो है बड़े आसानी से कट जाता है। आपकी बेटी खैरा का जन्मदिन है आज, तो उनको हम विश करना चाहेंगे अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो विशिंग योर मैजिकल बर्थडे खैरा। आपकी मामा कृष्टि और उनके पूरे परिवार की तरफ से लॉन्ग हेल्दी लाइफ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी। आपके छोटा सा जो भाई है प्रयान, निखित सिंह परिवार की तरफ से, नानी सरिता, अनीता, जानी, शुभा, नाना, मुकेश, मनोज, सुगन, डियापोल फैमिली फ्रॉम लिस्कालिये, मासीमा जो है मनीषा और उब्रू फैमिली फ्रॉम रोजिल, दे आर ऑल विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे माई स्वीट हार्ट। सो ये अगला गाना किसी ने बोला है रिक्वेस्टिंग फॉर अ सॉन्ग, तो चलिए जी आप हो जाटू परिवार कोतेज से एंड मोटाइलोंग से आप साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। स्पेशल रिक्वेस्ट दैट्स यशवंत जाटू ही फ्रॉम गुडलैंड्स, थैंक यू यशवंत जी। राजन देवी फ्रॉम मिलान इटली, हेलो जी कैसे हो आप। तो ये अगला गाना खासकर आपके लिए एंड डेडिकेटिंग इट स्पेशली फॉर यू माई डियर, और आपकी सिस्टर इन लॉ देविका बुजावन के लिए फ्रॉम मेबर्ग जो मॉरिशस में है, फैमिली डे बी फ्रॉम ग्लैंड पार्क वाकवा, थैंक यू। हे कनिष्का, हाउ आर यू, ब्यूटीफुल, नाइस सिलेक्शन, थैंक यू। सो एक नाइस सॉन्ग आपके लिए, सारे गाने बहुत ही नाइस हैं आज। सो इंदिरा जी प्रणाम, रेशमा, विमल, अंजू एंड कृष्णा, केशव, नील, माइशा एंड तानिया फ्रॉम मोंटाई ब्लांश। तो वी डू हैव अ ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम फिया जो बोलती है कि प्यारा सा गाना हो जाए उनके नाम जरूर मेरी जान। सो ये अगला गाना उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती।
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: Such beautiful and mesmerizing gaane, especially aap logon ke liye on Rhyme 2 Radio Masti. Filhal ke liye, just check your time, my dear. It's already 1 p.m.
1: Rhyme 2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Masti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2, Radio Masti.
1: Radio Masti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti. Feel the Masti. The Masti.
0: आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ. नमस्कार.
6: नमस्कार गिनीशा. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. एक नन्ही सी जान जिसका जीवन अभी भी शुरू हुआ था और अब वो नहीं रहा. कल रात खुशबुआ में एक मां को अपना 7 महीने का शिशु मृत मिला. हत्यारा बच्चे का पिता है जो 30 साल का है. उसे कल रात ही पोटवी नोफ की CID ने गिरफ्तार किया. जॉन डैनियल पेरिन ने स्वीकार किया कि उसने अपने बच्चे पर कटर से वार किया. उसने कहा कि उसे उस वक्त शैतानी आवाज़ें सुनाई दी और उसने ये भी स्वीकारा कि उसने ड्रग्स लिया हुआ था. कटर को जब्त किया गया है. आज सुबह जीतू अस्पताल में बच्चे का शव परीक्षण किया गया. कल बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा. हत्यारे को अदालत में पेश किया गया और हिरासत में रखा गया है. बच्चे की मां ने पुष्टि की है कि उसका साथी पहले से ही उसके साथ मारपीट करता था और एक बार उसने उस पर चाकू से भी वार किया था. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री यागया नवामाही ने इस घटना को गंभीर और अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा कि जाँच के बाद कानून का सख्ती से पालन किया जाना होगा. मॉरिशस के खेतीहरों ने अप्रैल से जून के बीच अपनी फसल कम कीमत पर बेची है. ये जानकारी इस वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी कृषि पैदावार पर आधारित रिपोर्ट में सामने आई है. और सब्जियों के मामले में कीमतों में गिरावट 2026 के पहले 3 महीनों की तुलना में कई अधिक रही. उदाहरण के लिए गाजर की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है. खेतीहरों को मिलने वाली कीमत में 54% से अधिक की कमी आई है. ठंड के मौसम को इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है जिस वजह से फसल अच्छी रही. विदेश की खबरों में इन दिनों चीन में कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनको वापस बुलाया जा रहा है. इसका कारण उसका हैंडल है. खासकर टेस्ला गाड़ियां जिसके दरवाजे के हैंडल में कई समस्याएं हो रही हैं. इस बीच इस समस्या को जल्द ही सुलझाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाप्त.

0: नेहरू रोड सेंट जूलियन विलास में, नेहरू रोड सेंट जूलियन विलास में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री ईश्वर दत्त श्यामलाल, जो विजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके भाई आनंद कुमार श्यामलाल के मकान नेहरू रोड सेंट जूलियन विलास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:30 PM। रॉ रोड लालोहा सेंट पियर में 48 साल के 48 ईयर्स ओल्ड के श्री अमिताभ दुर्जन, जो मातेंगो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके मकान रुथ्रॉयल लालोहा सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। लॉट नंबर एक मोसलमान सेंटविल रिविया डिज़ोंगी में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री जगमाया बोरापुताना, जो नायडू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3 बजे उनके मकान लॉट नंबर एक मोसलमान सेंटविल रिविया डिज़ोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2.

0: कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते हैं दोस्त, बिल्कुल इसी तरीके का जो आप सुन रहे हैं, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, और ये है किशोर दा की आवाज में, खासकर आप सभी लोगों के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं इस खूबसूरत से शो में, जिसका नाम है आपका रेट्रो रिदम ऑन रेडियो मस्ती।
1: रेट्रो रिदम
0: फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो रेट्रो रिदम में। आप सभी लोगों का बड़ी शिद्दत से स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, और वैसे वक्त आ गया है थोड़ा सा रिवाइंड करने का। मैं हूँ गिनिशा, जो बड़े प्यार से आपका साथ दे रहे हैं, लेकर आई हूँ बॉलीवुड के वो एवरग्रीन नगमे जो सिर्फ गाने नहीं होते हैं, हमारे यादों का हिस्सा है। वेलकम टू रेट्रो रिदम शो, जहाँ हर सुर के साथ एक कहानी है, और हर गाने के साथ एक याद। हमेशा याद रखना दोस्त कि कुछ गाने पुराने जरूर होते हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग है ना, कभी ओल्ड नहीं होते हैं। बस पहली धुन बजते ही और हम पहुंच जाते हैं अपने ही उन्हीं खूबसूरत यादों में, जो बहुत ही पीछे हम छोड़ के आए हैं जिंदगी में। तो चलिए एक और टाइमलेस बॉलीवुड क्लासिक के साथ बनाते हैं इस पल को और भी स्पेशल ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। और बाकी जो हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, 5499912294 पर सेंड मी योर डेडिकेशंस।

हरिहराना की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना खासकर आप लोगों के लिए। हम तो यहाँ पे बैठे बैठे गुनगुना रहे हैं इन द स्टूडियो नाइन, गेस की आपका भी यही हाल होगा। घुंघट में चेहरा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग है ना रोज, बस यूं ही साथ देते रहे। आई गॉट यू मोर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। और चलिए जी रोज अभी के लिए, जी हाँ, हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गाने, लेकिन साथ में चेक करेंगे आपके डेडिकेशंस जो आपने बड़े प्यार से भेजे हैं हमें ऑन 5499-1294 पर। और फिलहाल के लिए लेके जाएंगे स्ट्रेट अवे टू पेरिस। जी हाँ, मिस्टर डे फ्रॉम द सिटी ऑफ लव, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आपकी वाइफ के लिए

वैसे ही पहले लिखा था आप नहीं थे अच्छा स्विट्जरलैंड गए थे फॉर अ कपल ऑफ डेज अपनों के साथ यू हैड अ लवली टाइम दे अच्छी बात है ना कभी कभी ये जो वक्त है ना हमारे मिस्टर देव जी ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाता है जब आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाते हो

ब्यूटीफुल सॉन्ग मामा प्रेमा के लिए विशिंग हर हैप्पी बर्थडे और दुनिया की सारी खुशियां उनको मिले उनकी कीर्ति और आकाश की तरफ से एंड आई गेस मैसेज अधूरा रह गया सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू योर मामा गीता सीता फ्रॉम शातू बेनारेस द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड चलिए जी ये अगला गाना जो है तनवीर आयशा तेजल रायना एंड रयान करुणा कमी Well, that's Kamini, sorry, Tarachan. And Kamla, Gangabisu, Naneshita, jo hai, quatre bonnes, c'est ça, de rahi hai. So the next one goes out to you beautiful and lovely listeners, jo sa de rahi hai. Chandrani ji, pretty, and sabhi hai, harak parivar ke liye, jo an sojon se ke rehne wale hai. Jyoti, Chateau Benares ke, aur Ashni, Rekha, Surekha, aur sare madab parivar ke liye. And Miss Karishma, the next one goes out to you as well. Thank you.

0: Retro Rhythm.
1: कुछ गाने ऐसे होते हैं जो एक बार इंसान सुने तो बस दिलों दिमाग में हमारे जहन में ये हमेशा फंस जाते हैं, और जब भी हम इसी गाने को दोबारा सुनते हैं ना ऑन रेडियो तो ऐसा लगता है कि जी हाँ, अभी तो सुना था, इट्स ऑल फ्रेश लाइक ऑलवेज. बिल्कुल हमारे रेट्रो लवर्स, अब मूड को थोड़ा और म्यूजिकल बनाते हैं और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, वरीज को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए और एंजॉय कीजिए एक ऐसा बॉलीवुड नंबर जो आज भी दिल को इंस्टेंटली हैप्पी कर देता है. वैसे क्या बात है ना, कुछ मेलोडीज की बात ही अलग होती है. सालों बाद भी सुनो तो ऐसा लगता है जैसे कल ही रिलीज हुई थी, और इसी मैजिक का नाम है बॉलीवुड रेट्रो. योर रेट्रो रिदम ऑन आवर इनटू रेडियो मस्ती. वैसे लाइफ में हर दिन परफेक्ट नहीं होता है मेरी जान, लेकिन हर दिन में एक परफेक्ट का सॉन्ग जरूर हो सकता है. सो कीप स्माइलिंग एंड कीप बिलीविंग, और म्यूजिक को अपना लिटिल हैप्पीनेस पार्टनर हमेशा बनाए रखे. आपके साथ रेडियो मस्ती हमेशा साथ देते रहेंगे और आपके डेडिकेशन जरूर करेंगे ऑन एयर. यानी कि अगला गाना विश्वानी जी के लिए, उनके हस्बैंड दिवेश के लिए जो साथ दे रही है, एंड यस वी डू हैव द नेक्स्ट वन स्पेशली प्रकाश के लिए जो किसी की जान है, जो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपका मैसेज अधूरा रह गया. ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, लेकिन आई गेस कि आपने हमारे जो प्रकाश जी हैं सुन रहे हैं उन्होंने तो पहचान लिया होगा कि कौन है जो बड़े प्यार से उन्होंने इतना प्यारा सा मैसेज भेजा है. सुकुमार सानू की आवाज़ में ये है मेरे ख्वाबों में जो, स्पेशली गोज आउट टू ईच एंड एवरीवन जो साथ दे रहे हैं. टू ऑल दोस हु आर वर्किंग, हेलो जी, को हाश दी यू.
0: आई एम टू रेडियो मस्ती.

0: सारे शहर में नहीं सारी दुनिया में देखा जाए तो हमारे ये प्यारे प्यारे ये लिसनर्स जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी साथ देने के लिए ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। ये था आपका रेट्रो रिदम विद मेगी निशा और फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू यू। लेकिन फिलहाल के लिए गुड बाय क्योंकि हम वापस लौट के आएंगे 4 बजे जी हाँ इन योर रफ्तार वाइब्स। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

0: Thank you so much for choosing Aurang 2 Radio Masti as your radio partner. Check your time. It's 2 p.m.
1: Welcome to RM2
2: Radio Masti.
3: North, South,
2: 103.5,
3: East, West,
2: 96.4,
3: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Masti.
2: Radio Masti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti. Feel the Masti. The Masti.
0: आइए सुनते समाचार याचना के साथ नमस्कार
4: नमस्कार गिनीशा सभी सुनने वालों को नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार एक नन्ही सी जान जिसका जीवन अभी शुरू हुआ अब नहीं रहा कल रात खुशबुआ में एक मां को अपना 7 महीने का शिशु मृत मिला हत्यारा बच्चे का पिता है जो 30 साल का है उसे कल रात ही पोर्टलुई नोफ की सीआईडी ने गिरफ्तार किया जॉन डैनियल पेरिन ने स्वीकारा कि उसने अपने बच्चे पर कटर से वार किया उसने कहा कि उसे कुछ शैतानी आवाज़ें सुनाई दी थी उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने ड्रग्स लिया था कटर को जब्त किया गया है आज सुबह जीतू अस्पताल में बच्चे का शव परीक्षण किया गया कल बच्चे का अंतिम संस्कार होगा हत्यारे को अदालत में पेश किया गया और हिरासत में रखा गया बच्चे की मां ने पुष्टि की कि उसका साथी पहले से ही उसके साथ मारपीट करता था और एक बार उसने उस पर चाकू से भी वार किया था इस भयावह वारदात पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री याह्या नवामाही ने इस घटना को गंभीर और अस्वीकार्य बताया उन्होंने कहा कि जांच के बाद कानून का सख्ती से पालन किया जाना होगा श्रावण मास के पावन उपलक्ष्य में गंगा तलाव में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की पहल पर गणेश पंचमुखी मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजा का आयोजन किया गया डिवाइन म्यूजियम में इसका निर्माण किया जाएगा मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुबिन के अनुसार अगले साल महाशिवरात्रि पर्व तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा विदेश में सूखे के कारण सोमालिया में नया मानवीय संकट पैदा हो गया है विश्व खाद्य फेडरेशन के अनुसार ये दुनिया के सबसे गंभीर खाद्य संकटों में से एक है सोमालिया में वर्तमान में 60 लाख लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं जो अफ्रीका के इस देश की कुल आबादी का लगभग एक तिहाई भाग है इनमें से करीब 20 लाख लोग आपातकालीन स्तर की गंभीर भूख से जूझ रहे हैं ये संकट बार बार आने वाले जलवायु संबंधी झटकों और लगातार वन्य सुरक्षा की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार शोक समाचार सुनिए फ्रांस में 72 साल के 72 इयर्स ओल्ड की मिसेज बीबी साहिदा बुकस पेराशी नाम कादेर का इंतकाल हो गया है वे पहले शुमें ग्रेनिये की थी और क्यूपिप में रहा करती थी उनकी अर्थी आज जनाजा आज फ्रांस में ही उठाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM इन फ्रांस सैमा लोबे जुटोंबो में 77 साल के 77 इयर्स ओल्ड के श्रीमोहन प्रसाद रामसरन जो लोंग प्रोफेसर लिकल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके मकान सैमा लोबे जुटोंबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले दिपहत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 3 PM रारोद पिथित्रिविया में क्षमा करें नंबर 7 सेंट क्वा रोड सेंट क्वा पोटली में नंबर 7

0: सेंट क्वा रोड सेंट क्वा पोटली में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमावती जो धन श्रीमती परमावती जो धन जो परमावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ ही कल दिन के 1:30 बजे लाशा पेलाओ दौ तो मुगारवाल रोड पर चित्रिव्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैन जॉर्ज लिसालीन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: more music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies. Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: और चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ लेटेस्ट हिट्स के साथ आ गए हैं आपके म्यूजिकल हमसफर बनकर मंडे आफ्टरनून 24th ऑफ अगस्त. आई डू होप एवरीथिंग इज ऑलराइट. आफ्टर वीकेंड इट्स टाइम कि हम वेलकम करें एक नए वीक को और इसी वीक के साथ सेंडिंग लोड्स ऑफ लव, लोड्स ऑफ पॉजिटिविटी. मैं हूँ परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक. दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
5: रूप

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: Find your number. Find your fragrance. Bojelo. We all have a number one. Find Bojelo at Victoria Urban Terminal. Call on 214-6811.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. ये दुखद खबर जो कल से सबको झकझोर रही है. एक नन्ही सी जान जिसका जीवन अभी शुरू हुआ था अब नहीं रहा. कल रात खुशबुआ में एक मां को अपना 7 महीने का शिशु मृत मिला. हत्यारा बच्चे का पिता है जो 30 साल का है. उसे कल रात ही पोर्टविनोफ की CID ने गिरफ्तार किया. जॉन डैनियल पेरिन ने स्वीकारा कि उसने अपने बच्चे पर कटर से वार किया था. उसने कहा कि उसे उस समय कुछ शैतानी आवाज़ें सुनाई दी. उसने ये भी स्वीकारा कि उसने ड्रग्स लिया था. कटर को जब्त किया गया. आज सुबह जीतू अस्पताल में बच्चे का शव परीक्षण किया गया. कल बच्चे का अंतिम संस्कार होगा. हत्यारे को अदालत में पेश किया गया और हिरासत में रखा गया है. बच्चे की मां ने पुष्टि की कि उसका साथी पहले से ही उसके साथ मारपीट करता था और एक बार उसने उस पर चाकू से भी वार किया था. इस दुखद घटना पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री आर्या नवमारी ने इस घटना को गंभीर और अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा कि जांच के बाद कानून का सख्ती से पालन किया जाना होगा. अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की औपचारिक शुरुआत 7 अक्टूबर को मॉरिशस में की जाएगी. ये फैसला अफ्रीकी संघ के स्तर पर चलाए गए एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद लिया गया. मॉरिशस सरकार के अनुसार इस महाद्वीपीय रेटिंग एजेंसी की मेजबानी के लिए मॉरिशस का चयन एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में देश की विश्वसनीयता को और मजबूत करता है. साथ ही इससे अफ्रीका की वित्तीय व्यवस्था में मॉरिशस की भूमिका और सुदृढ़ होगी. मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को इस फैसले पर गौर किया. विदेश में ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बाद अब न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र वाले नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. वहां की सरकार द्वारा इसके लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा. इस पहल का मकसद है नौजवानों की सुरक्षा करना, खासकर सोशल मीडिया के खतरों के खिलाफ. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी होगी नौजवानों की उम्र का आश्वासन लेना. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. शोक समाचार सुनिए. लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमुसेस में 54 साल के 54 years old के श्री दीपक रघुबर, जो विनय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके बेटे उदय रघुबर के मकान लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमुसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 PM. नेहरू रोड सेंट जूलियन विलाज में 60 साल के 60 years old के श्री ईश्वरदत्त श्यामलाल, जो विजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके भाई आनंद कुमार श्यामलाल के मकान नेहरू रोड सेंट जूलियन विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टू डेट 4:30 PM. रॉयल रोड पिछित रिविया में, क्षमा करें, नंबर 7 सेंट ख्वा रोड सेंट ख्वा पोटली में, नंबर 7 सेंट ख्वा रोड सेंट ख्वा पोटली में 95 साल की 95 years old की श्रीमती परमावती जोधन की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 1:30 बजे लाशापेलाउदों दो मुहा रॉयल रोड पिछित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज लेसालिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट

0: 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों यहां पर बी टाउन की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. सो आई डू होप दैट यू आर हैविंग अ नाइस टाइम ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती. म्यूजिकल जो आपकी आफ्टरनून है इसे हम कर रहे हैं और बी टाउन की खबरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं. सो टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार, उनके एक फिल्म हैवान अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इससे पहले खिलाड़ी के फैंस के लिए एक और दिलचस्प खबर है और अक्षय कुमार साइंस फिक्शन फिल्म में नजर आएंगे जिसकी शूटिंग आज सोमवार से शुरू हो गई है और इस फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह प्रोड्यूस करने वाले हैं. अक्षय कुमार की साइंस फिक्शन एलियन थ्रिलर का टाइटल सामुक है और इसका जो ऐलान है वो हो चुका है. अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने अपने किरदार की पहली झलक शेयर करते हुए जानकारी दी कि शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है. अक्षय कुमार सूट बूट और टाई पहने हुए फिल्म के क्लिप बोर्ड में नजर आ रहे हैं. अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, नया जॉनर, नया किरदार, नई चुनौती, विवान आहूजा ड्यूटी के लिए तैयार. सो ये तो हमें पता चल गया है कि इस फिल्म में उनके किरदार का नाम होने वाला है विवान आहूजा. और आगे उन्होंने लिखा कि फिल्म शामुक की जो शूटिंग है वो शुरू हो चुकी है. विपुल अमृतलाल शाह द्वारा डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड ये फिल्म एक साइंस एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज जॉनर जो है वो काफ़ी डिफरेंट है. न्यू कैरेक्टर है, नया चैलेंज है एंड विवान आहूजा का किरदार निभाते नजर आएंगे अक्षय कुमार.

0: Talkies,
1: Radio Musti,
2: Radio Musti.
3: And well friends, next track के साथ it's time for Pari to say goodbye. जाते जाते आपके messages, आपके dedications, हमारी रेखा जी यहाँ पर गानों को enjoy कर रही हैं. Dedicating गाना for बेटा अंश पोंबोंजे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप दोनों. जीना जोय सरी साथ दे रही हैं आप भी. Warm welcome आपका on the waves of RM2 Radio Musti. Davison from Lal Mati हमारा साथ दे रहे हैं आप. गाना होगा आपके नाम श्याम देवचन. गर्मा गर्म कॉफी के साथ enjoying the music. Friends है साथ राहुल, राजू, रवीन, सुनील, हरी एंड सभी देवचन परिवार ऑफ पेबे. गाना होगा आपके नाम. हैप्पी मंडे सभी के लिए विशेष लेकर आई हैं वीना जगेसा ऑफ बेलवी मोहल और डेडिकेट कर रही हैं गाना सभी परिवार सभी दोस्तों के नाम. ललिता जी आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो चलिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर एवरीवन एंड इसी ट्रैक के साथ परी साइनिंग ऑफ आ रही है. गिनीशा लेकर योर रफ्तार वाइब्स.

0: टाइम चेक, इट्स 4 पीएम।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: नॉर्थ साउथ
2: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4,
3: सेंटर
2: 99.4।
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

0: आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ये दुखद खबर जो कल रात सामने आई, एक दर्दनाक हादसा। कल रात गोशबा में एक मां को अपना 7 महीने का शिशु मृत मिला। हत्यारा बच्चे का पिता है जो 30 साल का है। उसे कल रात ही पोर्टविनोव की CID ने गिरफ्तार किया। जॉन डैनियल पेरिन ने स्वीकार किया कि उसने अपने बच्चे पर कटर से वार किया। उसने कहा कि उससे कुछ शैतानी आवाज़ें सुनाई दी। उसने ये भी स्वीकारा कि उसने ड्रग्स दिया था। कटर को जब्त किया गया। आज सुबह जीतु अस्पताल में बच्चे का शव परीक्षण किया गया। कल बच्चे का अंतिम संस्कार होगा। हथियारे को अदालत में पेश किया गया और हिरासत में रखा गया है। बच्चे की मां ने पुष्टि की कि उसका साथी पहले से ही उसके साथ मारपीट करता था और एक बार उसने उस पर चाकू से भी वार किया था। इस दुखद हादसे को लेकर कई लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री आर्यना वर्माही ने इस घटना को गंभीर और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद कानून का सख्ती से पालन किया जाना होगा। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की औपचारिक शुरुआत 7 अक्टूबर को मॉरिशस में की जाएगी। ये फैसला अफ्रीकी संघ के स्तर पर चलाए गए एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद लिया गया। मॉरिशस सरकार के अनुसार इस महाद्वीपीय रेटिंग एजेंसी की मेजबानी के लिए मॉरिशस का चयन एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में देश की विश्वसनीयता को और मजबूत करता है। साथ ही इससे अफ्रीका की वित्तीय व्यवस्था में मॉरिशस की भूमिका भी सुदृढ़ होगी। मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को इस फैसले पर गौर किया। विदेश खबरों में, ऑस्ट्रेलिया और यूके के बाद अब न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र वाले नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहां की सरकार द्वारा इसके लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। इस पहल का मकसद है नौजवानों की सुरक्षा करना, खासकर सोशल मीडिया के खतरों के खिलाफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी होगी नौजवानों की उम्र का आश्वासन लेना। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
4: Radio Musti.
5: North, South,
4: 103.5.
5: East, West,
4: 96.4.
5: Center,
4: 99.4.
6: RM2, Radio Musti.
4: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Time check, 4:03.
7: Raftar Vibes. Filmy Rides.
4: RM2.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: बिल्कुल जी, आपके फिल्मी राइट्स को लेकर फिर से आ गई हूँ मैं आपका साथ देने के लिए ऑन आवर एम2 रेडियो मस्ती। यस इट्स गणेशा। हाँ जी, हम तो आए थे 12 से 2 के बीच में, फिर आपको रेंडेवू दिया था अपने रफ्तार वाइब्स के लिए, जहाँ पे हमेशा हम आपको लेके जाते हैं अपने फिल्मी राइट्स पर। 6:08 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो जी, नमस्कार, गणेशा का प्रणाम, कैसे हो मेरी जान। आई रियली होप एवरीवन इज फीलिंग गुड। मंडे ब्लू ज्यादा फील नहीं कर रहे हो। वीकेंड अभी गुजरा है, आई होप दैट यू हैड अ ग्रेट वन, अ गुड वन विद योर फैमिली एंड योर डियर वंस। यस, अभी हम आ गए हैं खूबसूरत गानों का सिलेक्शन लेकर। सो टू ऑल दोस जो ऑलरेडी ऑफिस से निकल चुके हैं, गोइंग बैक होम, आई जस्ट सजेस्ट यू ऑल ड्राइवर्स टू ड्राइव वेरी केयरफुली, मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल ड्राइविंग, अपना सीट बेल्ट लगा के रखें और फोन को थोड़ा साइड में रख दीजिए। एंड टू ऑल दोस जो अभी भी काम पे हैं, सुको आज टू यू, थोड़ी देर बाद आप भी जाओगे घर पे। सो सिट यून एंड स्टे कनेक्टेड ऑन R2 रेडियो मस्ती। जी हाँ दोस्तों, लेकर आए हैं कुछ ऐसे खूबसूरत गाने जो आपको फील हम कराएंगे कि अभी पार्टी शुरू हुई है।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: OMG
2: Radio Musti. Come and meet the MBC and Lutoviati this Wednesday 26th of August or celebrate kijiye MBC RM2 or MBC RM3 ki first anniversary subah 10 baje se lekar all over the island games hangama full on masti guaranteed aaiye aur maza lijiye Lutoviati sabhi zaruri educational informations aur responsible khel ke bare mein quiz sessions goodies aur celebrations poore din ke dauran zyada jankari के लिए लुतुवेयर लुतुटेक के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। लुतुवेयर और MBC हंगामा ही हंगामा।
1: OMG
2: रेडियो मस्ती। RM2 रेडियो मस्ती।

तो चलिए जी, टाइम तो बीता चला जा रहे हैं और रहे के बाद खूबसूरत गाने हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए. दिस ब्यूटीफुल शाम, दैट्स योर रफ्तार वाइब्स. सो माय डियर लवली लिसनर्स, आपको तो बताएं एवरी आफ्टरनून जब भी हम आते हैं कुछ ना कुछ तो लेकर आते हैं. और फिलहाल के लिए आई गॉट यू अ लवली गिफ्ट. जी हाँ, आई गॉट यू अ टिकट, यानी अ प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेक्युलर शान कॉन्सर्ट लाइव इन मॉरिशस. तो मैं आपको बता दूं, द गेम इज पावर्ड बाई टिकट बॉक्स .mu. एंड the game jo hai, you just have to participate right now on our N2 Radio Mercy so that you can be our lucky winner and win this lovely ticket. So filhal ke liye main aapko yaad dila dun, Shan, such a great singer. You just have to close your eyes and let the music take you on a journey. It's a journey filled with melodies, memories and timeless voice of Shan. And now our N2 Radio Mercy is giving you the chance to experience this magic live in Mauritius. So play with our N2 Radio Mercy and stand a chance to win a platinum ticket to assist the spectacular Shan live concert in Mauritius. And one voice, one stage, one unforgettable night at SVICC on the 5th of September 2026, as from 8 p.m. proudly organized by ticketbox.mu. अगर आप जीतना चाहोगे द प्लैटिनम टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव, हम आपको सुनाएंगे एक प्यारा सा गाना. आपको बस हमें बताना है, ये जो गाना हमने लिया है फ्रॉम द मूवी सलाम नमस्ते, कौन से साल में रिलीज हुई थी? इन विच ईयर दिस मूवी वॉज रिलीज? वॉज इट इन 2005, 2005 या 2006? 2005 या 2006? 5 99 12 94. Full name, full address ke saath. Send me the right answer. Then only you will be eligible to participate in the game by sending me your full name and full address. Ye khoobsurat sa jo movie hai, Salaam Namaste, kaun se saal mein?

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
1: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स
4: Well guys, check your time. 6:38 minutes ho chuke hain. That was such a beautiful track actually. Ooh la la. Lekin unfortunately, main kar rahi hu ooh la la. Aur aa gaye hain hamare sports guru in the studio. Mr. Arvind, good afternoon. Shuru ho jaiye.
5: Yes. Ab nahi, ye gana inhone jo chalaya, ye to alag baat hai. Abhi jab main aa raha tha, to mujhe Pari ne bhi bataya ki aap wo gana ga rahi thi. ये क्या हुआ, क्यों हुआ?
4: कैसे हुआ? और कब हुआ कुछ पता ही नहीं चला.
5: हुआ सैटरडे को अर्ली किक ऑफ में ही हुआ.
4: अच्छा चलो हो गया ना, क्या कर सकते हैं,
5: बस इतना कह देते हैं कि हो गया.
4: बस हो गया ना,
5: पहला मैच था, अभी वार्म अप हो रहा है. हल सिटी नई टीम आई है, सो उनको भी खेलने का मौका मिलना चाहिए.
4: तो मैं अपने आप को ही बोल रही हूँ कि गिन्नी अपना मुंह बंद रखना, इसमें तेरी भलाई है.
5: ऑलराइट, सो वीकेंड रैप अप, बता रहे थे आपको कि इस पहले वीकेंड में काफी क्या कहें, काफी फैटलिटी जैसे कहते हैं, काफी लोग झटका लगा. एक तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अर्ली किक ऑफ, फिर टोटनहम हॉटस्पर लेट मैच, लिवरपूल को भी झटका लगते लगते बच गया. हल निकल पाए, आई मीन दे कुड फाइंड द सॉल्यूशन अगेंस्ट कल न्यूकासल यूनाइटेड के खिलाफ 2-2. बहुत लोग कह रहे थे इट वाज ए लकी एस्केप. तो इराओला अभी टीम को बना रहा है, अभी आगे चलकर और नए खिलाड़ी आएंगे. विल वेट एंड वॉच. आज इस पहले वीकेंड का आखिरी मैच होगा और ये है एक लंदन डर्बी, फुलहाम वर्सेस चेल्सी. चेल्सी ने टोटनहम हॉटस्पर की तरह काफी खरीदारी की है, लेकिन टोटनहम हॉटस्पर में हमने देखा नए नए खिलाड़ी आए हैं, अभी तक वो जो मोयू हैं अभी तक सही नहीं बैठा है. तो चेल्सी को भी अपने स्टार्टिंग 11 को चुनने में, उनको साथ लाने में थोड़ा प्रॉब्लम है. फुलहाम लुक्स टू बी अ मोर एस्टैब्लिश्ड टीम, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टार खिलाड़ी, लेकिन इनमें जो जो एंसेंबल है, फुलहाम होम मैदान में है, इससे लंदन डर्बी चेल्सी को बच के रहना हो.

0: होगा, फुल हैमरिंग हो सकती है या फिर चेल्सी फुलहाम को अपने समुंदर में डुबो सकता है। कुछ भी, आज ये मैच 11 बजे। स्पेन के ला लीगा में 2 मैचेस, ओसासुना वर्सेस लेवेंटे, मालागा का मुकाबला डिपोर्टिवो ला कोरुना से होगा। जर्मन कप के फर्स्ट राउंड के अनेक मैच हैं और इटली के सेरी आ में 2 मैच, बोलोनिया वर्सेस लाजियो, रोमा वर्सेस फ्लोरेंटिना। मेजर लीग सॉकर में भी आज एक मैच खेला गया, अटलांटा यूनाइटेड ने स्पोर्टिंग केसी को 2-1 से हराया। ये आज के मैच, कल यूईएफए चैंपियंस लीग के प्ले ऑफ के रिटर्न लेग के मैच खेले जाएंगे, सो कल पता चल जाएगा कौन सी वो टीमें हैं जो चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में पहुंचेंगी। और कल इंग्लिश लीग कप के भी मैच खेले जाएंगे जिनमें प्रीमियर लीग की कुछ टीमें आएंगी यहां पर, और इनमें वेस्ट हैम यूनाइटेड, साउथहैम्पटन, फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट, लीड्स, साउथहैम्पटन, वेस्ट हैम, ये तो बताया आपको, शेफील्ड वेंसडे वुल्व्स, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, इप्सविच लेस्टर और बार्न्सले क्रू, कल इस पर और जानकारियां देंगे सभी फिक्स्चर्स जो हो रहे हैं। वैसे आज सुबह से, कल से बहुत बातें हो रही है बात किम्बर्ली लेकू डेब्यू पीना, पहली बार के लिए मॉरिशस की एक साइक्लिस्ट जाकर ग्रेट ब्रिटेन में चैंपियन बनती हैं, और ये बात करते रहेंगे भाव उसको। क्रिकेट में इट्स हैपनिंग फॉर इंडिया, लेकिन बारिश में ही, क्योंकि आज दूसरा जो टेस्ट मैच है इंडिया और श्रीलंका के बीच, इसमें इंडिया की टीम ने 503 रनों का टारगेट रखा है, डिक्लेयर किया है 503। इसमें 2 सेंचुरीज रहे, एक तो पदिकल ने पहले से ही सेंचुरी बनाया था, और आज किसने जोड़ा और रन, इसमें काफी रन आए, इट इज ध्रुव जुरेल 115 नॉट आउट, रविंद्र जडेजा 43 पर आउट हुआ, ऋषभ पंत 63, देवदत्त पदिकल तो 117 रन बनाकर आउट हुआ। सो 503 आज शुरू कर चुका है श्रीलंका बैटिंग, अभी 2 विकेट खो चुके हैं ऑलरेडी, एक लिया प्रसिद्ध कृष्णा ने और दूसरा सुतर ने, सो 8-4-2, इट्स वेरी डिफिकल्ट श्रीलंका के लिए, क्योंकि ये मैच भारत के सामने अब क्लीन स्वीप करने का एक बहुत ही अच्छा मौका आ गया है, दे कैन ऑलवेज टेक द मैच 2-0 से जीत कर। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू मॉरिशस, किम्ले कुपेना जो चैंपियन बनी, एक एक्सप्लोर कह सकते हैं, ऐसे ही जीतते रहो, और कमिंग अप अभी कुछ दिन बाद शी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, सो ऑल द बेस्ट, वहां से भी एक मेडल आ जाए तो सोने पे सुहागा। और आपको कहेंगे टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा,
1: लेकिन जुर पाया, क्यों नहीं जुर पाएगा, दैट्स नॉट द स्पिरिट, द स्पिरिट इज
0: उसको ऐसे लूटा कि फिर जुर ना पाया,
1: वो उड़ पाएगा, दोबारा उड़ पाएगा, फिकर मत करना।
0: इस गाने में और आता है
1: नहीं राम, गिनी अपना मुंह बंद रखना, गिनी अपना मुंह बंद रखना आज, बस
0: अल्लाह के बंदे सुन ले, अच्छे दिन आएंगे
1: जरूर,
0: गाना सुना दे।
1: नहीं मैं आपको एक बार बताऊं, आई एम सो पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग कि कोई बात नहीं, हारे तो क्या हो गया, कल फिर जीतेंगे।
0: Exactly.
1: आज अगर हम गिरे हैं तो कल क्या उठने पाएंगे,
0: टाइटल
1: बुरे दिन जीतने हैं। बुरे दिन के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं, रात के बाद फिर से दिन शुरू होता है, तो आई बिलीव इन ऑल पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स।
0: हाँ, डेविल्स के साथ
1: पास कर मेरे पापा।
0: चलो, थैंक यू।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाई क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: रेडियो मस्ती, रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
4: RM2।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: आर एम टू 4:50 हो चुके हैं और थोड़ी देर पहले हमने पूछा था आप लोगों से एक सवाल है जहां पे कई लोगों ने इतने सारे जवाब हमें मिले. जी हां, हमने आपको सुनाया था द सॉन्ग यस माय डियर गोज टेकन फ्रॉम द मूवी सलाम नमस्ते और पूछा गया था ये मूवी कौन से साल में रिलीज हुई थी 2005 या

2006 द राइट आंसर इज 2005। जी हाँ दोस्तों, 2005 में रिलीज हुई थी ये खूबसूरत सा मूवी असलाम नमस्ते। एंड आपको बता दें इट्स एन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी ये मूवी, एंड इट वाज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद, जिसमें हमने देखा था प्रीति जिंटा को, सैफ अली खान को, अरशद वासली एंड जी हाँ जावेद जाफरी भी। तो ये बहुत सारे लोगों ने सही जवाब हमें भेजे और लकी ड्रॉ में किसका नाम निकल आया है, एक ही लकी विनर है आज, जस्ट लाइक द रूल ऑफ द गेम। तो आपने जीता है अ प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेक्युलर कॉन्सर्ट इन मॉरिशस, शान द बॉलीवुड सिंगर। और आज का लकी विनर है हमारा सतीश मोनिक जो रहते हैं क्यू पिप्स। कंग्रेचुलेशंस टू यू। Yes, he is the lucky winner, Mr. Satish Monika, who is living in QPIP. So congratulations to you, my dear. You are winning a ticket, a platinum ticket to assist the spectacular Shaan live concert in Mauritius. So Shaan is one of the India's most beloved playback singers, known for his smooth, soulful and versatile voice. He rose to prominence in the late 90s and became a family voice in Bollywood through romantic and even melodic and feel-good songs over the years. The singer Shaan has delivered numerous memorable hits across Hindi cinema and Indian pop singer, pop music. So earning a strong fan following across generations, his warm vocal style, effortless stage presence or ability to connect emotionally with his audiences have made him a popular live performer. So enjoy the charismatic energy, soulful voice, timeless melodies of Shaan live on SVICC stage on the 5th of September 2026 as from 8 PM. So congratulations to you, my dear. Koi aapko zarur phone karega to let you know how you can grab your tickets with your ID card from the embassy.

Welcome back in the second hour of this beautiful show. जी हाँ दोस्तों, that's your Raftaar Vibes, your filmy rights with me here. Ganesh on our MTU Radio Masti, 5:10 हो चुके हैं. कहाँ तक पहुँचे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त. So, all the drivers drive carefully as usual. बस रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए. And keep on enjoying the good music. 5499-1294 पर start sending me your dedication.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: OM2 ग्रेट ग्रेट फिल्मी राइट्स पे लेकर जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप कहाँ तक पहुँचे मेरी जान, आपकी राइड कहाँ तक जा रही है? सो आई नो सो मेनी पीपल माइट बी सिटिंग इन द बस राइट नाउ. अगर आप मेट्रो में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो, ट्रक चला रहे हो या बस चला रहे हो, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, सो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना, और पैसेंजर्स जितने भी हैं आप बस इन्जॉय करते रहना ये खूबसूरत एंड लवली गाने जो लेकर आई हैं आप लोगों के लिए. 5 1 9 9 12 94. येस आई एम रिसीविंग ऑल योर मैसेजेस, एंड द नेक्स्ट वाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे, किसी ने लिखा है मेरे हस्बैंड विमल जो काम कर रहे हैं, ही इज वर्किंग फ्रॉम होम. So, courage to you, Reshma Tulsi Nouvel France. Aapki pyari biwi ne ek pyara sa message bheja hai to dedicate a beautiful song for you, my dear, of course. To chaliye, message to sweet baby Arshad. Well, आप दोनों के बीच में एक फासले बहुत है, लेकिन फिर भी ये दिल तो एक है ना रेबिका. सो मे गॉड ब्लेस यू एंड योर लव ऑलवेज. नाइस थिंग द डे विद योर प्रोग्राम, विशिंग माय डॉटर खैरा हैप्पी बर्थडे. ही हैप्पी बर्थडे टू यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम योर मामा कृष्टि एंड पूरे परिवार की तरफ से जो आपको विश करना चाहेंगे, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस ऑन ऑल टू रेडियो मस्ती. एंड हियर वी गो, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू, लेकिन नाम नहीं आया, अधूरा रह गया मैसेज. आई एम जस्ट लविंग द सिलेक्शन, थैंक यू सो मच.

बिल्कुल जी, पापा तो कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा और बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, इसीलिए हम सारे बच्चों को बोलते हैं कि काम ऐसा करो जो हमेशा माँ बाप क्या के जो नाम है ना उनको रोशन करो, और हमेशा मम्मी पापा को खुश रखो और उनकी इज्जत करो, और हमेशा आप भी खुश रखेंगे, अगर मम्मी पापा खुश तो बच्चे भी खुश। सो थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए, और फिलहाल के लिए टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज टुडे ऑन आवर 2 रेडियो मस्ती, हियर वी गो, दिस वन गोज आउट टू यू।

0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
1: बिल्कुल जी, इट्स टाइम फॉर योर फैशन टिप्स राइट नाउ ऑन आवर इंटर रेडियो मस्ती। 5:40 होने को है। आज हम टिप्स देंगे फॉर द मोस्ट जो कॉमन होते हैं फैशन टिप्स, जो एवरीडे यूज में, एवरीडे फैशन में काम आ सकता है। आप अगर कपड़े पहनते हो तो फिट जो है हमेशा सही रखो, ना टू टाइट पहनो ना टू लूज पहनो, हमेशा अपने फिटिंग्स के पहनना चाहिए। कलर्स को मैच करो, ओवरडू मत करो। बेसिक क्लोथ जो है मस्ट हैव है, एंड क्लीन और स्टाइलिश शूज हमेशा पहनो। एक्सेसरीज जो है हमेशा सिंपल रखो, और ओकेजन के अकॉर्डिंग आउटफिट चूज करो हमेशा। कभी कभी ओवरडू हो जाता है, और लेयरिंग जो है से लुक अपग्रेड करो, और न्यूट्रल कलर्स इजीली स्टाइल हमेशा में रहते हैं, और क्लोज जो है हमेशा आयरन और नीट एंड क्लीन रखो। कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट फैशन टिप, ये तो हम हमेशा ही आपको बताते रहते हैं। तो बस ये जो मोस्ट कॉमन फैशन टिप्स हैं, आप हमेशा उसको अप्लाई करो, यू गोना लुक गुड।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.

Well guys, I really hope that you are loving these beautiful गानों का selections जो लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए on RMT Radio Mercy. And yes, फिलहाल के लिए चलिए जी, the next one I just want to dedicate it for Ghamas family जो हैं especially बहनों के लिए Anju and Anjit and also for Kavi and Meenakshi Ghamas. Well, they came to Mauritius for holidays and enjoying nowadays, so not to forget husband और दो प्यारी बेटियों के लिए, and that's coming from Amila Ghamas जो हैं from Bombo, I guess. Yes, तो चलिए जी, this one goes out to you. And here we go, ये अगला गाना जो है हम dedicate करना चाहेंगे especially to everyone, wishing happy Monday to you guys from Vina Jagisau, from Bellevue Morel, और परिवार वालों के लिए, दोस्तों के लिए और हमारे radio team के लिए, that's so sweet of you. And Lalita Jitan, the next one goes out to you. आप गाड़ी धो रहे और सुन रहे हैं हमें, so that's so sweet. आपकी colleague teachers के लिए सरिका वंदना, Sonia, Sheena, Tanya, Simi, Ashvi, Rumi, Lalita and Jitan परिवार के लिए जो लवंचा से साथ दे रहे हैं. And we do have the next one, Har Har Mahadev to you my dear. Ji haan, and it's a new week, so new week dedicating the next one, Shehnaaz Jogi aapke liye, Riviera Durand passe family ke liye, enjoying your wonderful show with Garma.

0: इन द लवली मेस्मराइजिंग वॉइस ऑफ हमारे प्यारे अरिजीत सिंह आप लोगों के लिए ऑन ऑल टाइम रेडियो मस्ती। और फिलहाल के लिए 5:56 हो चुके हैं, थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे 6 की समाचारों की ओर और उसके बाद तक गुड म्यूजिक कंटिन्यूज।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

सभी को नमस्कार। इस सायंकालीन बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। रोशबा में कल शाम 7 महीने के एक शिशु एड्रियानो के पिता ने चाकू से वार करके उसकी हत्या की। आज दिन के दौरान जॉन डैनियल पेरिन को अदालत में पेश किया गया, उस पर हत्या का आरोप दर्ज। कैंसर के मरीजों के लिए जिन दवाइयों की अभी कमी है उन्हें जल्द से जल्द मंगवाया जाएगा। इस बीच पीड़ितों के इलाज में कोई रुकावट ना आए इसके लिए नेशनल कैंसर सेंटर में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू। किम ले कोपियना ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मॉरिशस का नाम रोशन किया। मॉरिशस की साइक्लिस्ट ने कल टूर ऑफ ब्रिटेन जीता। विदेश में ईरान ने आज चेतावनी दी है कि देश उसके खिलाफ अमेरिका के आर्थिक दबाव वाले अभियान में शामिल होंगे, उन्हें इसकी नतीजे भुगतने होंगे। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार अब विस्तार से। इस दुखद घटना के साथ बुलेटिन की शुरुआत, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रोशबा में कल शाम 7 महीने के एक शिशु एड्रियानो के पिता ने कटर के साथ उस पर वार किया और उस

0: की हत्या कर दी। इस व्यक्ति ने ये अपराध किन हालातों में किया इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं। आज दिन के दौरान जॉन डैनियल पेरिना को अदालत में पेश किया गया और उस पर हत्या का आरोप दर्ज किया गया। उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है। बच्चे का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा।
1: परिवार के सदस्यों को इस बर्बर हिंसा के बारे में स्पष्टीकरण देने में मुश्किल हो रहा है। आदियानो केवल 7 महीने का था। ये ट्रासेडी कल रविवार को रोशवा में घर पर हुई। संदिग्ध हमलावर की बहन मारी सांड्रा लियोपोल ने कहा, इलाके में इस हादसे पर लोग भावुक एवं हैरत हैं।
2: Un enfant qui prenait aucune défense, prenait aucun nom. Mon iskalem boko kone kuma bugla ka pa venir faire des affaires kuma. Qui ne passe dans sur la tête, qui l'esprit qui libé. Il est vraiment sacrilant. Maurice bizen peine avant ça fait long coup.
1: Jean Daniel Perrine ko aaj subah Portuguese adalat mein pesh kiya gaya aur use 31 agast tak hirasat mein rakha jayega. Police ne uski suraksha ke liye uski zamanat par rihai par aapatti jatayi. शिशु की मौत के सही कारणों का पता लगाने के वास्ते पुलिस जांच जारी है। शिशु का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा।
0: डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आरियाना वामारी ने इस अपराध का कड़ा खंडन करते हुए इसे घिनौना बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुश्किल कि इस घड़ी में उनका मंत्रालय संबद्ध परिवार को मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए तत्पर है। उन्हें सुनते हैं।
3: C'est bien triste, hein? C'est bien triste pour penser que tout le monde est choqué par sa manière qu'il savait bien là, il est tué, il tient sur la vie. Donc tout le monde condamne ça, sa situation là, fin arrivée. Donc nous condamnons ça, nous condamnons ça fortement. Donc nous espérons qu'il n'y a pas de aux enfants qui est tué atrocement comme ça.
0: अफ्रीकी संघ की तरफ से की गई कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद अगले 7 अक्टूबर को मॉरिशस में आधिकारिक तौर पर अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की लॉन्चिंग की जाएगी। मॉरिशस सरकार के अनुसार इस कॉन्टिनेंटल एजेंसी की स्थापना के लिए मॉरिशस का चुना जाना एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के तौर पर देश की विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है और अफ्रीका के वित्तीय ढांचे में मॉरिशस की भूमिका मजबूत करता है। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इसका जायजा लिया। जरा विस्तार अब्दुल बुलाके की रिपोर्ट में विवरण गीता सुनारान का।
4: अफ्रीकी संघ के कई सदस्य देशों की भागीदारी वाली एक प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद मॉरिशस को अफ्खा यानी अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुख्यालय की मेजबानी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार चुना गया है। इस एजेंसी का काम अफ्रीकी देशों और आर्थिक संस्थाओं की स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग देना होगा, ठीक उसी तरह जैसे मूडीज और S&P करती हैं। इसी सिलसिले में मॉरिशस में अगले 5 और 6 अक्टूबर को अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 7 अक्टूबर को टापू में अफ्खा की औपचारिक लॉन्चिंग की जाएगी। इस पहल को आगे बढ़ाने वाले अफ्रीकन पीयर रिव्यू मैकेनिज्म के अनुसार मॉरिशस का चयन उसकी वित्तीय व्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र में रखे गए भरोसे को दर्शाता है। डॉक्टर मिशेक मुती से कहते हैं,
5: Rightly so, would be a best place to
4: मॉरिशस एजेंसी की शुरुआत के लिए उचित जगह है। हम इसे एक महत्वपूर्ण चरण मानते हैं और प्रगति भी। हम मॉरिशस की ओर से मिले समर्थन के लिए आभारी हैं।
5: I think this is a very complimentary move.
4: मॉरिशस की सरकार के लिए इस नई महाद्वीपीय संस्था की मेजबानी करना अफ्रीकी वित्तीय व्यवस्था के केंद्र में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक अतिरिक्त अवसर है। वित्तीय सेवा मंत्री डॉक्टर ज्योति जीतन कहती हैं, 7 अक्टूबर को अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष इस नोटेशन की जिम्मेदारी मॉरिशस के प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, ये दिखाने के लिए कि ये एक उच्च स्तरीय पहल है अफ्रीकी संघ के लिए। मॉरिशस के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। हम सिर्फ अफ्रीका के लिए एक मंच नहीं, हम अफ्रीका के निर्माण में भाग लेना चाहते हैं। अफ्खा से काफी उम्मीदें हैं। ये अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं की ओर

0: पूंजी जुटाने और उसे सही दिशा में लगाने में मदद करेगी। साथ ही निवेशकों के लिए उपलब्ध जानकारी को बेहतर बनाने और वित्तीय सहायता तक पहुंच आसान करने में भी इसकी अहम भूमिका होगी। ये एक बड़ी चुनौती है जिसे नई एजेंसी अगले अक्टूबर से मॉरिशस में अपने भविष्य के मुख्यालय से पूरा करने का प्रयास करेगी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के बीच स्थित होगा।
1: कैंसर के मरीजों के लिए जिन दवाइयों की अभी कमी है उन्हें जल्द से जल्द मंगवाया जाएगा। इस बीच पीड़ितों के इलाज में कोई रुकावट न आए इसके लिए नेशनल कैंसर सेंटर में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू किया गया है। दवाइयों की कमी दूर करने के उपायों में तेजी लाने और सप्लाई श्रृंखला पर फिर से गौर करने के वास्ते आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय में एक आपातकालीन बैठक लगाई गई। मंत्री अनिल बिजू ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तरह की प्रशासनिक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगले अक्टूबर महीने से देश में सामानों की एक नई श्रेणी पर शुगर टैक्स लागू नहीं होगा। बजट 2026-2027 में घोषित इस कदम को अगली सूचना तक रोक दिया गया है। ये फैसला तब लिया गया जब अधिकारी गण छोटे व्यवसायों पर इसके प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। ग्रुप डेंटरप्रेन्योर सोलिडेयर टूस एंसेंबल के सदस्यों ने आज 24 अगस्त को इस सिलसिले में मंत्री आदिल अमियामिया के साथ एक मुलाकात की। किमले को पियना ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मॉरिशस का नाम रोशन किया। मॉरिशस की साइक्लिस्ट ने कल टूर ऑफ ब्रिटेन जीता। उन्होंने अपने स्टेज जीत के दौरान बनाई गई बढ़त को आखिर तक बनाए रखा। इस तरह वे अफ्रीका महाद्वीप की पहली साइक्लिस्ट बनी जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने उनसे इस जीत की खास सराहना की। हमारी सड़कों पर सावधानी मात्र सजा के डर से नहीं बल्कि ली जानी चाहिए, बल्कि नागरिक कर्तव्य उससे ज़्यादा ज़रूरी है और चालक को इसका एहसास खुद होना चाहिए। यही अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज का मकसद है जिसने हाल में ADPS रोड सेफ्टी प्लेज नामक अभियान की लॉन्चिंग की। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो रोजाना हमारी सड़कों पर सफर करता है। लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश के तहत अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज अपने रोड सेफ्टी प्लेज अभियान के तहत सीधे कर्मचारियों से उनके कार्यस्थल पर जाकर मुलाकात कर रहा है। विभिन्न कंपनियों में प्रेजेंटेशन और बातचीत के जरिए संगठन के प्रतिनिधि वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की याद दिलाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात अच्छे और सुरक्षित व्यवहार को लगातार अपनाने पर जोर दिया जाता है। जेगी अनुदय कहते हैं, अन्य चालकों राहगीरों पर भी ध्यान देना चाहिए, गाड़ी की जाँच करनी चाहिए। योगिनी कंदन कहती हैं, गाड़ी चलाने से पहले खुद को तैयार करती हूं कि मैं गाड़ी चला सकूंगी या नहीं। कर्मचारियों के बीच इस संस्कृति को लगातार याद दिलाना हमेशा अच्छा होता है। सड़क पर कुछ गलत व्यवहार से जुड़े खतरों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण और जानकारी देने के सत्र आयोजित किए जाते हैं। ओशन ट्रेशर के एडमिन एंड अकाउंटेंट्स मैनेजर कनेन अनिया काउंटन कहते हैं, हमारी कंपनी में कई चालक हैं और उनके बीच जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज के लिए जागरूकता फैलाने का मतलब केवल नियमों या उल्लंघन की स्थिति में होने वाली सजाओं को याद दिलाना नहीं। अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज की प्रोग्राम डायरेक्टर दीक्षा रामदवा कहती हैं, इस प्लेज पर हस्ताक्षर करने से खुद से वादा करते हैं कि ऐसे व्यवहार अपना रहे हैं जो उचित हो और इसका हमेशा पालन करना चाहिए। हमारी सड़कों पर व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सोच में बदलाव भी जरूरी है। इस अभियान के जरिए अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज ज्यादा जिम्मेदारी से वाहन चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है।
1: विदेशी खबरों ने ईरान ने आज चेतावनी दी है कि जो देश उसके खिलाफ अमेरिका के आर्थिक दबाव वाले अभियान में शामिल होंगे उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जल्द ही ये स्पष्ट करने वाले हैं कि अमेरिका तेहरान पर आर्थिक दबाव कैसे बढ़ाएगा। ये इस संघर्ष के छठे महीने पर पहुँचने के बाद किया जा रहा है। अब

0: चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। आज रात मौसम अच्छा रहेगा, देर रात को बादल घिर आएंगे। बर्फ और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 13 से 15 और साहिली इलाकों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह मौसम अच्छा रहेगा, दोपहर बाद को बादल घिर आएंगे और पश्चिम में कहीं कहीं बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:25 पर सूरज निकलेगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर फैजन का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। कोलाबू मोताईलोंग में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुललिता बलदाओ जो मैडम पतिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 उनके बेटे अविनाश रामप्रसाद के मकान कोलाबू मोताईलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैफगर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। सुभाष रोड मोसेल मोरामफुल बोमोंग प्लेन डी पापाई में चौंसठ साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रेमिला कासावेन पैदाशी नाम लक्ष्मण प्रसाद और जो प्रेमिला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10:00 उनके बेटे विजेंद्र कासावेन के मकान सुभाष रोड मोसेल मोगामफल बुआमोंग प्लेंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनुस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। नंबर सात सेंट क्वा रोड सेंट क्वा पोर्टवी में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमावती जोधन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 लाशा पेलाउदों दे मुगारा रोड पर सिथविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज ली सालिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमसर्स में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री दीपक रघुबर जो विनय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 उनके बेटे उदय रघुबर के मकान लाबो स्ट्रीट पॉम्पलेमसर्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: अब अभी के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग सॉन्ग स्पेशली फॉर यू राधा जी फ्रॉम कनाडा जो साथ दे रही हैं, डेडिकेटिंग इट स्पेशली टू ऑल योर फैमिली इन मॉरिशस और हमारे RM2 लिसनर्स के नाम. थैंक यू सो मच.
1: सपना जहां

जान मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

तेरा मिलना पल दो पल का, कुछ ऐसी मुलाकातें होती हैं जो पल दो पल का होता है लेकिन इट लीव्स अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट इन आवर लाइफ. और ऐसी मुलाकातें बहुत ही ख़ास होती हैं, स्पेशली कुछ ऐसे बेगाने होते हैं जो अपनों से भी ज़्यादा अपने हो जाते हैं और उनमें से आप लोग हैं एक. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. शाम के 7:06 हो चुके हैं. टू ऑल दोज लिसनिंग टू अस राइट नाउ, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया. एंड बिल्कुल एक सेगमेंट यहां पर रखते हैं आपको पैम्पर करने के लिए. एंड सेगमेंट है बस आपके मैसेजेस को पढ़ने के लिए और हम इंतज़ार में बैठे होते हैं. सो आपके मैसेजेस का हम वेलकम करेंगे ऑन 5499-1294. इट्स अ वंडरफुल मंडे इवनिंग. सुबह सुबह मंडे का जो दिन होता है लोगों के लिए बहुत ही हेक्टिक होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही हैवी होता है, कुछ लोगों के लिए बस इतना डिफ़िकल्ट होता है, वर्क का प्रेशर होता है, टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में आपको

0: काम पे जाना पड़ता है, लेकिन इतने भाग दौड़ में बस एक ही सोल्यूशन है, दैट इज स्टे कनेक्टेड टू गुड म्यूजिक। तो चलिए गुड म्यूजिक के साथ साथ यहाँ पर कुछ प्यार भरी बातें भी करेंगे, और साथ में हम बैठे हैं कुछ दिल का हाल सुनने और सुनाने के लिए। ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर योर मैसेजेस वंस अगेन ऑन 5499-1294। दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: प्यार में हसरतें और कुछ आशाएं भी होती हैं और मे बी कुछ एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो एंड क्या करें प्यार आपने किया है तो बदले में आपको कुछ एक्सपेक्ट तो करना ही चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि जब आप प्यार करते हैं तो आपको बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बस प्यार लुटाना चाहिए. लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है. अगर आप प्यार लुटा रहे हैं तो बदले में थोड़ा बहुत प्यार का हकदार आप भी होते हैं. सो इसीलिए इट्स वेरी ह्यूमन टू एक्सपेक्ट लव इन रिटर्न ऑफ लव. 7:20 हो चुके हैं एंड चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज. इट्स अ वंडरफुल इवनिंग जहाँ पर हम और आप साथ साथ हैं. चांद सितारों के बारे में बात करते करते हम प्यार की मंजिल तक पहुँच जाते हैं और प्यार की मंजिल तो इतनी खूबसूरत है कि ये माहौल इतना आशिकाना हो जाता है, इतना मैजिकल हो जाता है कि क्या कहें. तो चलिए इस समा को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, इस समा को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम कुछ और खूबसूरत गीत लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. वी आर सर्विंग यू विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूज़िक टिल 9 PM और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वक्त शायद अपना मील ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे बन आप जी शुभ आहार ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा.
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: कभी-कभी इन खूबसूरत गीतों को सुनने के बाद मन में और दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है, वो ये है कि अगर सब लोगों को बस प्यार बांटना आता तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। और कुछ ऐसे खबर भी सुनने को नहीं मिलते, बस प्यार ही प्यार, और ये दुनिया प्यार से भर जाए तो बस कमाल ही हो जाए। एंड आई जस्ट होप एंड आई जस्ट प्रे फॉर अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और आजकल तो लोगों के मन में इमोशंस थोड़े बहुत ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इसको जगाने के लिए वी स्टिल हैव टाइम। और आई जस्ट होप जो कंपैशन है, जो प्यार है, वो हर एक के दिल में राज करे और डोमिनेट करे। चलिए यहाँ पर वी हैव सम ब्यूटीफुल आपके मैसेजेस जो हम तक पहुँच रहे हैं। नमस्ते दीदी दिव्या, हाउ आर यू डूइंग? योर शो इज़ फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर अगला गाना गुज आउट फॉर यलेश शाम ऑफ सुरीनाम, आपके फैमिली के लिए, RM2 टीम के लिए। एंड आप RM2 को हैप्पी एनिवर्सरी विश कर रहे हैं फ्रॉम यलेश शाम ऑफ सुरीनाम। थैंक यू सो मच माय डियर यलेश। हेलो मैम, अ रिक्वेस्ट इफ़ पॉसिबल मूवी इतिहास दिल के कनम से फ्रॉम नंदिनी। नंदिनी, ये गाना तो शायद हमने लास्ट वीक चलाया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हम ट्राई करते हैं, बट वी डोंट प्रॉमिस। सो चलिए अगला गाना आपके नाम भी नंदिनी। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। एंड यहाँ पर आप कहती हैं, हाय हम सपना, वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू माई लव जान प्रकाश, प्लीज़ डेडिकेट अ ब्यूटिफुल गाना हमारे लिए। एंड साथ में आप कहती हैं, प्लीज़ डेडिकेट द नेक्स्ट ट्रैक फॉर माई हस्बैंड विशाल, हु इज़ ड्राइविंग फ्रॉम फ्लैग टू गुडलैंड फ्रॉम वाइफ माधवी। एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2
1: Radio Masti।

Maybe आपकी love story में कुछ ऐसी ही कहानी है जहाँ पर किसी ने आपको ना ही इनकार किया है ना ही अपना इकरार किया है. So हम आए हैं आपके काम को और भी आसान

0: करने के लिए. अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि वो शख्स आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, या फिर आप ही वो शख्स हैं जिसको लेकर आपको प्यार का खुलासा करना है, सो बिल्कुल आप तक हम ऐसे ऐसे खूबसूरत गाने पहुंचा रहे हैं जिनको सुनने के बाद लव इमोशंस और भी इंक्रीज हो जाएंगे और आप मजबूर हो जाएंगे इजहार इकरार करने के लिए. सो चलिए 8:08 हो चुके हैं. विशिंग यू ऑल वंस अगेन अ लवली लवली गुड इवनिंग. दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक. टू ऑल दोज जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच. आपके कुछ मैसेजेस ज़रूर हम तक पहुँच रहे हैं. लोग कहते हैं कि इश्क इतना मत करो कि सर पर सवार हो जाए, और हम कहते हैं इश्क इतना करो कि पत्थर दिल को भी प्यार हो जाए. एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम आकाश चेतन मनसुख. एंड आप है बॉम्बू से, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड ऑल्सो यहाँ पर किसी ने कहा है हाय दी हाउ आर यू, प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय जान. आपकी जान के लिए बिल्कुल, वो आपसे बहुत ही दूर है लेकिन आँखों के बहुत ही करीब, ये तो हमेशा हम कहते हैं. मन तरस रहा है उसको देखने के लिए, क्या करे हालात ही ऐसे हैं. चले ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात आ ही जाते हैं जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, लेकिन सिचुएशन के साथ हमेशा आपको बस फ्लो में बहते चले जाना है. एंड यू ऑलवेज नीड टू कीप स्माइलिंग. एंड कहते हैं ना कि प्यार का दूसरा नाम पेशेंस है और इंतज़ार है, तो थोड़ा सा और इंतज़ार सही. एंड यू जस्ट वॉन्ट टू से you just want to tell Sanjeev I love you a lot, unke Diwani Ash ki taraf se. And a nice song to all RM2 team, thank you so much hamara saath dene ke liye. And chaliye isi ke saath hum badhenge kuch aur khoobsurat geeton ke saath. Don't forget ye karwa chalega ratri ke 9 baje tak, so aapke messages ka hum intezar kar rahe hain on 5499 1294.
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge
3: RM2
1: Radio Masti.

0: एक्चुअली सच में किसी का प्यार जख्म पे मरहम वाला काम ही करता है, इसीलिए कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ टाइम हील्स एंड एट टाइम्स प्यार भी आपके जख्मों को हील करता है, इसीलिए किसी की जिंदगी में सच्चा प्यार का होना बहुत ही जरूरी है।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.
0: उन दिनों की बात है और उन दिनों की बातों को लेकर हम यही चाहते हैं कि आप उन यादों को ताज़ा करें। एंड कभी-कभी यादों को हम जब याद करते हैं ऐसे में आंखें नम हो जाती हैं एंड बस आपको थोड़ा मौका मिल रहा है टू रिवाइव सम ब्यूटीफुल मेमोरीज, सो व्हाई नॉट।

0: 8:40 मिनट होने को हैं, बढ़ते हैं आपके कुछ खूबसूरत मैसेजेस की ओर। हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग प्यारी दिव्या, प्यारी टीना जी, आपको भी नमस्ते। एंड रेडियो मस्ती हाई वॉल्यूम के साथ आप हर एक गीत को एंजॉय कर रही हैं, थैंक यू सो मच। हैविंग जीना एंड एज यूजुअल एक प्लेट आपने हमारे लिए सेट करके रखा है, थैंक यू सो मच टीना जी। हमने ऑलरेडी डिनर ले लिया है और अगर आप ऐसे करेंगे तो वजन घटाने में थोड़ा बस थोड़ी परेशानी हो जाएगी। नेक्स्ट रॉग इज आउट टू ऑल दोज जो आपको जानते हैं, थैंक यू सो मच। आपको भी हर हर महादेव, स्टे सेफ, शुभरात्रि। और जितने भी सारे लोग शायद गंगा तलाव की ओर बढ़ रहे हैं, आपको बस हम कहेंगे हैव अ सेफ ड्राइव एंड स्टे कनेक्टेड विद गुड म्यूजिक। RM2 को चूज़ करने के लिए थैंक यू सो मच। हाय दिव्या जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड हमेशा की तरह आपको बों कुआज, दैट्स रियली स्वीट। आपको भी बहुत बहुत सारा प्यार। अनीता जी, आप हैफली कॉन्फ्लाक से एंड रेडियो मस्ती टीम के लिए आपने अगला गाना डेडिकेट किया है और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे फॉर बेटी अवनी, हस्बैंड रोशन फ्रॉम मनीषा। आप गंगा तलाव की ओर नहीं, एक्चुअली आप घर वापस लौट रहे हैं फ्रॉम गंगा तलाव, तो चलिए आपको भी हर हर महादेव। और रोमांटिक गाना आपको चाहिए फॉर योर लव विभा, शी इज़ लिसनिंग फ्रॉम गाँव बुआ, सो विभा को स्पेशल हेलो हाई। एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग रेडियो मस्ती।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: वेल इतना भी दूर हम सोचने की बारे में नहीं, इतना दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि दूर जाएंगे तो आपसे जो जुदाई है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, इसलिए हम जा रहे हैं एक बार फिर से वापस आने के लिए ऑफ कोर्स इन योर वंडरफुल शो जिसका नाम है इवनिंग लाउंज, और बहुत ही जल्द हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है। ऑलरेडी 8:52 एंड चलिए इसी खूबसूरत गीत के साथ हम आपको मौका दे रहे हैं टू लिसन सम ऑफ मोर ब्यूटीफुल गाने नॉन स्टॉप आपकी खिदमत में। सो चलिए तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय, शुभ रात्रि।

इट्स अ लवली इवनिंग टू यू ऑल माय डियर लिसनर्स। स्वीकार करें नीतूषा का करजोर प्रणाम। रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और इस समय आई नो बहुत सारे भक्तजन जो है गंगा तालाब की ओर बढ़ रहे हैं। श्रावण मास है तो आप सबको हर हर महादेव। आइए 3 घंटों के सुरीले सफर लेट नाइट ग्रूव्स में आपका हार्दिक स्वागत है।

लेट्स टॉक अबाउट रिश्ता, लेट्स टॉक अबाउट प्यार। वैसे आज बात करते हैं उस पहले पल की, जब दिल धड़कता था, सांस रुकती थी और आंखों ने कह दिया था वो बात जो जुबां कह नहीं पाई। लव बॉन्ड शुरू होता है एक नजर से, एक स्माइल से, और फिर धीरे धीरे बन जाता है जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा।

संभाल के रखना उस बंधन को क्योंकि पहली नजर दोबारा नहीं आती। बात हो रही अबाउट बॉन्डिंग्स रिलेशनशिप्स की। वैसे दोस्तों सबसे मजबूत लव बॉन्ड वही होता है जो दोस्ती की नींव पर बना हो। पहले तुम बेस्ट फ्रेंड थे, फिर हर रात की बात बन गए, फिर हर दुख का इलाज बन गए। आज दुनिया तुम्हें कपल कहती है, पर हम जानते हैं पहले तुम दोस्त थे। That's why तुम्हारा प्यार इतना गहरा है। दोस्ती वाला प्यार कभी पुराना नहीं होता, है ना?

रिश्ते दूर रहकर भी और करीब आ जाते हैं। फोन की 2 बजे वाली कॉल, खाना खाया वाला मैसेज और हर वीकेंड का काउंटडाउन दूरियां टेस्ट करती है, पर सच्चा लव बॉन्ड टूटता नहीं, वो और मजबूत होता है। अगर आप भी किसी का इंतजार कर रहे हो तो ये गाना आपके नाम।

सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ बाप का प्यार होता है। रेडियो के सभी बच्चे लोग, अगर आप जागे हुए हैं तो सुनिए, सबसे पहला लव बॉन्ड होता है माँ की गोद और पापा की उंगली। बिना शर्त वाला प्यार, बिना मतलब वाली दुआ। जब दुनिया समझेगी नहीं तब माँ समझेगी, जब दुनिया साथ छोड़ देगी तब पापा का कंधा मिलेगा। आज घर फोन करो और कह दो, माँ पापा आई लव यू टू।

वैसे रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, लड़ते भी हैं, चिढ़ाते भी हैं, पर जब बात इज्जत की आए तो सबसे पहले सामने वही खड़े हो जाते हैं। भाई बहन का लव बॉन्ड शोर वाला होता है पर दिल से बहुत साफ। राखी हो या छोटी छोटी बात, ये रिश्ता खून से नहीं एहसास से जुड़ा होता है।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: You're listening to RM2, Radio Masti.
1: बेंच के कोने में छुप कर नोट देना, लास्ट पीरियड में गेट के बाहर मिलना, स्कूल के दिनों का प्यार मासूम होता है, ना फ्यूचर का टेंशन, ना दुनिया की परवाह, बस दिल की बात, और आज भी वो याद आता है, तो एक प्यारा सा मैसेज अपने स्कूल यार के नाम।
2: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार पर
3: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए. इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स. और आज बॉन्डिंग्स रिलेशनशिप्स पर बात हो रही है. शादी के बाद प्यार खत्म होता नहीं है दोस्त, वो और गहरा होता है. सुबह की चाय, रात की दवाई, बिल भरना, बच्चे संभालना, रोमांस कम हो सकता है पर केयर डबल हो जाती है. यही तो असली लव बॉन्ड है. साथ बूढ़े होने का वादा जो है वो सबसे खूबसूरत होता है.

ओहो, ये बॉन्डिंग कुछ खास है। हर लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होता नहीं है, कभी कभी रास्ते अलग हो जाते हैं, पर याद रखें, जो दिल से चलना था उसकी इज्जत करना सीखो। गालियां मत दो, बदनाम मत करो, कुछ बॉन्ड्स दिल में रह जाते हैं नाम के बिना। मूव ऑन, पर नफरत मत करो।

0: टाइम जोन अलग, शहर अलग, पर दिल एक, मतलब वीडियो कॉल पर साथ खाना, एक ही मूवी एक साथ देखना और हर फेस्टिवल पर अगली बार साथ बोलना, क्या है ये? दूर रहकर निभाने वाले लोग सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम्हारा इंतजार रंग लाएगा।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
2: लड़की बड़ी अनजानी है।
3: Radio Musti, all the way.
4: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
3: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

60 की उम्र में भी हाथ पकड़कर वॉक पर जाना, एक दूसरे के लिए चाय बनाना और पुराने गाने सुनकर मुस्कुराना, ये है असली लव बॉन्ड। जवानी में चेहरे बदल जाते हैं पर प्यार नहीं बदलता। दादा दादी से सीखो प्यार का मतलब क्या होता है।

किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना सीखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी कदर करो, अपने सपने पूरे करो, अपने जख्म खुद भरो। जब आप खुद से खुश रहोगे तभी कोई और भी आपके साथ खुश रह पाएगा। सेल्फ लव ही सबसे बड़ा बॉन्ड है।

0: जले।
1: देखो कोई परफेक्ट नहीं होता, कभी गुस्सा, कभी ईगो, कभी गलतफहमी, पर सच्चा रिलेशनशिप माफी मांगने और माफ करना जानता है। रिश्ते तोड़ने से पहले एक बार बात कर लेना, हो सकता है एक बात से सब ठीक हो जाए।

एक और प्यार है, वो है अनदेखा प्यार। कैसे? कुछ लोग हमें बिना बताए प्यार करते हैं, टीचर जो एक्स्ट्रा क्लास देता है, दोस्त जो छुप कर बिल भर देता है, वो अनजान जो बारिश में छतरी दे देता है। दुनिया में लव बॉन्ड सिर्फ कपल में नहीं होता, इंसानियत भी बड़ा प्यार होता है। आखिर में प्यार का मतलब कब्जा नहीं होता, प्यार का मतलब है आजादी देना, इज्जत देना और मुश्किल में हाथ ना छोड़ना। जिसको चाहो उसको समझो, उसके खुशियों में खुश रहो, क्योंकि लाइफ छोटी है और लव बॉन्ड बहुत ही कीमती। तो चले हम भी अपने इस बॉन्ड को, दोस्ती वाले बॉन्ड को बरकरार रखते हुए, मुलाकात बहुत जल्द होगी। टिल देन नीतू की ओर से बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
4: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।